मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 जून वर्ष 2026, प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। नए दिन का नए उजाला जब धरती को भी रोशनी से भर देता है, तो मन में भी ईश्वर के स्मरण से नई ऊर्जा, नई आशा का संचार होता है। सुबह का ये पावन समय प्रार्थना, श्रद्धा और आत्मिक शांति का समय है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ प्रस्तुत है आपका अपना भक्तिमय कार्यक्रम वंदना, जहां भजन, शब्द और नाद के माध्यम से हम सभी धर्मों की प्रेम, करुणा और मानवता की उस अमूल्य सीख को नमन करते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो आइए मंगलवार की इस शुभ बेला का आरंभ करते हैं हनुमान जी के भजन के साथ।

संकट की हर घड़ी में ईश्वर अपने भक्तों को शक्ति देते हैं। ईश्वर के नाम के स्मरण मात्र से ही मन में साहस और विश्वास का संचार होता है, और जब हमारा ये हृदय पूरी श्रद्धा से ईश्वर के सामने झुकता है, तब उसी से यही अनुभव होता है कि हर दिशा में वही परम शक्ति विद्यमान है।

संतों और गुरुओं की वाणी हमें जीवन का सच्चा और सरल मार्ग दिखाती है। यह संसार क्षणभंगुर मात्र है, लेकिन सत्य, सेवा और ईश्वर का नाम का सहारा हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही प्रेरणादायक और भक्तिमय शब्द।

मोहब्बत बांटना और दिलों को जोड़ना ही हर दिन की सबसे खूबसूरत तालीम होती है। जब दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी उतरती है तो नफ़रत की हर तारीकी अपने आप मिटने लगती है। आइए उसी अदब और अकीदत के साथ सुनते हैं ये दिलनशी नात। जब महफिल में नात पाक की सदाएं बुलंद होती हैं ना, तो दिलों को सुकून और रूह की ताजगी और ज़्यादा ताज़ा हो जाती है। नात सिर्फ अल्फाज का तरन्नुम नहीं होते, बल्कि अकीदत, अदब और इश्क ए मोहम्मद की खूबसूरत तारीफ का इजहार होते हैं।

आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्रद्धा के दीपक विश्वास की लौ और प्रेम के मधुर भाव के साथ हनुमान जी की ये अत्यंत लोकप्रिय आरती।

इसी हनुमान आरती के साथ आज का भक्तिमय वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:30 हुए हैं, अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस का

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: श्री रामचरितमानस कांड से आज का प्रसंग आपने सुना। सवेरे के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। ये संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा सवेरा का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: एक प्रथम प्रतिज्ञा जो मेरी कविता है वो आपके सामने रखती हूँ। हिंसा आखिर मौन अहिंसा पर इतनी निर्दयी है क्यों? चारों ओर भड़कते शोले हर दिल चिंगारी है क्यों? चारों ओर

जहाँ चिताओं पर मेले लगने की बातें होती थी। आज वही परिवेश खो गया, आज वही परिवेश खो गया। निज जीवन की बातों में राख बन गई चिंगारी, उन भूली बिसरी बातों में, उन भूली बिसरी बातों में, उन भूली बिसरी बातों में। पावन पुण्य कृत शायद फिर कोई नहीं करने वाला, पावन पुण्य कृत शायद

खामोश सी हो वादी, कोयल की बोली हो नदिया के किनारों पर, पेड़ों की टोली हो खामोश सी हो।

वहां चल के चलो तुमको हम गीत सुनाते हैं, दिन रात मोहब्बत में हम ये फरमाते हैं, कुछ पल के

दिन रात मोहब्बत में हम ये फरमाते हैं। सागर की लहरों से जमी रेत की गीली हो, संग साथ तुम

संग साथ तुम्हारा हो, हंसी और ठिठोली हो, उस रेत पे यादों का, उस रेत पे यादों का, चलो घर को सजाते हैं, दिन रात मोहब्बत में हम ये फरमाते हैं, दिन रात मोह

0: सनम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यधारा में सुषमा सवेरा का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी

0: राधाकृष्णनवर्यः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन्नवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे अष्टदिनांके राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलंकरणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत पञ्चदश वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमाणस्य 50 वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आपको बरसात में होने वाले रोग और सावधानियों के विषय में जानकारी दी जाएगी। तो लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: गर्मी के मौसम के बाद वर्षा का आगमन सुहाना लगता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी गर्मी के प्रकोप से राहत की सांस लेते हैं। पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही वर्षा अनेक बीमारियों का कारण भी है, क्योंकि इस मौसम की आर्द्रता और तापमान जीवाणुओं और कीटाणुओं को पनपने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि बरसात में खांसी, जुकाम, आंख आना आदि बीमारियां अधिक होती हैं। यदि इस ऋतु में खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी गंदा होने के कारण कीटाणु अधिक होते हैं जो तरह तरह के

0: रोगों के उत्पादक होते हैं। गंदे पानी के कारण खाद्य पदार्थों में अम्लता बढ़ जाती है और शरीर का पित्त दूषित हो जाता है। भारी पानी और गंदगी के कारण कफ भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार बरसात में वात, पित्त, कफ तीनों के दूषित होने के कारण रस रक्तादि धातुओं में विकार उत्पन्न होने लगता है। वर्षा ऋतु में हल्के सादे आहार पदार्थों का सेवन करना उत्तम होता है। यदि संभव हो तो वर्षा ऋतु के 4 महीने एक ही बार भोजन करना चाहिए। यदि सुबह का भोजन ना पचा हो तो दोबारा ना खाएं। इसी प्रकार यदि रात का किया भोजन भली भांति ना पचा हो और प्रातःकाल भोजन या नाश्ता किया जाए तो इससे मंदाग्नि और अधिक मंद हो जाती है। वर्षा ऋतु में पहले किया हुआ भोजन भली भांति पचने पर ही दोबारा भोजन करें। वर्षा ऋतु में वायु प्रबल और कुपित होता है। इसके शमन के लिए मधुर रसों वाले पदार्थों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। जठराग्नि की रक्षा बरसात में हल्के और पुराने अन्न से होती है, इसलिए इस ऋतु में पुराना जौ, गेहूं, साठी चावल का सेवन विशेष लाभप्रद है। साठी चावल की ये विशेषता है कि इसमें स्निग्ध तत्व बहुत कम होते हैं। वर्षा में मंदाग्नि के कारण भी ये आहार आसानी से पच जाता है, लेकिन पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन यथासंभव कम से कम करें। हाथ से कुटे चावल उनकी अपेक्षा विशेष उपयोगी होते हैं। इस ऋतु में चावल का च्यूड़ा वायुनाशक होने के कारण सेवनीय है। दालों में छिलके वाली दाल, विशेषकर मूंग की दाल का सेवन उत्तम होता है। वर्षा ऋतु में भोजन बनाते समय आहार में थोड़ा सा मधु मिला देना चाहिए, क्योंकि शहद भूख बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अजीर्ण, थकान, वायु विकारों से भी बचाव होता है। इस ऋतु में भोजन के बाद छाछ का सेवन अत्यंत हितकारी होता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि छाछ का सेवन विशेषकर वर्षा ऋतु में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन इस ऋतु में दही खाना हानिकारक है, विशेषकर सावन भादो के महीने में। इस ऋतु में तेल और मसालों का सेवन कम से कम करें। वर्षा ऋतु में फल और सब्जी हमेशा धोकर खाएं, क्योंकि इनमें मिट्टी, कीड़े आदि मिलते हैं। सब्जियों में भिंडी, परवल, बैंगन, कुमड़ा, लौकी, तोरई, चिचिंडा, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ परवल है। करेले का सेवन भी लाभप्रद है, लेकिन कुवार महीने में ये नहीं खाना चाहिए। ये सब्जियां पचने में हल्की होती हैं, साथ ही वात आदि तीनों दोषों को संतुलित भी रखती हैं। इस ऋतु में पानी को उबालकर और छानकर पिएं। इन दिनों पसीने के कारण त्वचा रोग, घमौरियां, खाज, खुजली तथा अन्य व्याधियां हो जाती हैं। शरीर को स्वच्छ और सूखा रखें। रसायन के रूप में वर्षा ऋतु में बराबर मात्रा में शक्कर और हरड़ चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग वर्षा ऋतु में उचित आहार विहार के नियमों का पालन करते हैं, वे इस ऋतु में विकारों से बचे रहते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने बरसात में होने वाले रोग और सावधानियों के विषय में जानकारी ली। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने के बारे में जानकारी लेंगे।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना। तो हमारे किसान भाई जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना एक मुख्य नकदी फसल है, और किसान भाई इस फसल को अब आधुनिक तरीके से उगा रहे हैं, और इसमें विशेष तौर से हमारे किसान भाई ट्रेंच विधि अपना रहे हैं, जिसमें हमारे किसान भाई 4 से 4.5 फीट अपने गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। और इस विधि में हमारे किसान भाई ये अवश्य जान लें कि जब प्रारंभिक अवस्था में गन्ना होता है तो उसमें हमारे किसान भाई जो खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल गड्ढे में यानी कि नाली में जड़ों के पास करते हैं, चाहे वो बुआई की बात हो या बुआई से बाद में यूरिया है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या भैया और कोई पोषक तत्व है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, तो किसान भाई इसमें जड़ों के पास ही इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अब बात आती है कि जैसे जून का महीना चल रहा है और जून

0: का यह जो है दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, तो इन दिनों किसान भाई अपनी गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं, और मिट्टी चढ़ाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी भूमि की ऊपर की मिट्टी होती है, जिसको हम 6 से 8 इंच परत के रूप में जानते हैं, और उसी में हमारे पौधों की बढ़वार के लिए समस्त पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो गन्ने की जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं, तो मिट्टी बीच से लेकर जो हमारी गन्ने की लाइनों के बीच की मिट्टी है तो होती है, तो वो हमारे गन्ने की लाइनों के ऊपर पहुंच जाती है, जिससे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व हमारे गन्ने को प्राप्त हो जाते हैं, और गन्ना अत्यधिक तेजी से बढ़वार करता है। और इसके साथ साथ एक फायदा ये भी होता है कि हमारी गन्ने की फसल आगे चलकर जो असौज का महीना होता है, या सितंबर अक्टूबर में जब हवाएं चलती हैं और वर्षा होती है, तो उस समय हमारी गन्ने की फसल गिरती नहीं है। और गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने से पहले हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी चढ़ाने से पहले अपने गन्ने के खेत में आप कोई जबरदस्त कीटनाशी, जैसे क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल हो गया, या भैया साइपरमेथ्रिन हो गई, या क्लोरोपायरीफास हो गया, या प्रोफेनाफास हो गया, ऐसी दवाई आप यूरिया के साथ मिलाकर अपने खेत में बिखेर दें, और उसके बाद छोटे ट्रैक्टर से आप मिट्टी चढ़ाएं, तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। और किसान भाई कुछ फावड़े की सहायता से मिट्टी चढ़ाते हैं, लेकिन फावड़े से उतनी अच्छी मिट्टी नहीं चढ़ पाती, और इसमें श्रम भी अधिक लगता है और पैसा भी अधिक लगता है। तो छोटे ट्रैक्टर से आप मिट्टी चढ़ाएं, और मिट्टी चढ़ाने वाला जो आपका दुपल्टू यानी के डबल मोल्ड बोल्ट होता है, जिसमें दो पर होते हैं, तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि उस मिट्टी चढ़ाने से पहले यदि अपने खेत में छोटा रोटावेटर, जिसको रोटरी कहते हैं, जो छोटे ट्रैक्टर चलती है, तो पहले रोटावेटर अपने खेत में चलाकर जो मिट्टी है उसको भुरभुरी बना लें, और जब भुरभुरी मिट्टी हो जाए तो उसके बाद आप खाद, उर्वरक और कीटनाशी का इस्तेमाल करें, और उसके बाद ट्रैक्टर से अपनी गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ाएं, तो अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और आगे चलकर लगभग 70 से 90 दिनों के लिए हमारी फसल में कोई कीट भी नहीं आता। और मिट्टी चढ़ाने के बाद यह ध्यान रखें कि हमारे किसान भाई मिट्टी चढ़ाने के बाद अपनी फसल को पानी अवश्य दे दें, ताकि मिट्टी हमारे गन्ने की लाइन के दोनों ओर अच्छी तरह से जम जाए, चिपक जाए। और भैया इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे किसान भाई गन्ने की नीचे की जो सूखी पत्तियां हैं उनको उतार दें, इससे हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी और गन्ने की जो मोटाई है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो किसान भाई जान लें कि भैया मिट्टी चढ़ाने का बहुत ही अधिक हमारे गन्ने की फसल को लाभ होता है। मिट्टी चढ़ाने से हमारी गन्ने की फसल जहां एक ओर गिरती नहीं है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई का पानी भी लगभग एक समान हमारे खेत में समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि सभी जगह मिट्टी चढ़ी होती है, और हमारे गन्ने को ज्यादा पानी भराव की स्थिति में भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो गन्ने की लाइनों में मेड़ बन जाती हैं वो पूरी पानी में डूबती नहीं है, और फसल को जितनी आवश्यकता होती है वो नमी पर्याप्त मिल जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी देहरादून की प्रस्तुति राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात 10 बजे। वहीं जिले की हलचल आप सुनेंगे प्रातः 9:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कन्नौज और पीलीभीत जिले की हलचल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित नाटक बंदी। प्रस्तुतकर्ता और निर्देशिका हैं माधुरी बर्धवाल। प्रस्तुति सहयोग रहेगा रजनीश गुप्ता का। संध्या 7:32 पर सुनिएगा श्री हरि कीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। वहीं श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर।

0: किसान भाई अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे अपने निर्धारित समय यानी संध्या 6:05 पर। कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी डेयरी व्यवसाय आमदनी का अच्छा स्रोत कैसे, इस विषय पर। युवा साथियों का खास कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें रहेंगी बूझो तो जाने कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, सुर सर्कल, रहस्य सीरीज और बूस्टर। इसके साथ ही आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। महिला जगत कार्यक्रम में आधी आबादी से क्रम में वार्ताकार पारुल शर्मा की डिजिटल युग में पेरेंट्स के सामने आने वाली समस्याओं पर वार्ता सुनिएगा। समय कार्यक्रम का वही रहेगा 1:15 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। प्रातः के 7:18 होने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है।

0: मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
3: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ते बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक ICU का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

अंधेरे की चादर दूर कहीं सिमट चुकी है। आसमां पर फैलती रोशनी की किरणें नए दिन का आगाज कर रही हैं। हवाओं की नई ताजगी पंछियों के मधुर सुरों में प्रकृति के साथ मानो पूरी धरती से ये कह रही है, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, कुछ नया जानने, कुछ अच्छा करने और बीते कल से अपने आज को बेहतर बनाने के लिए हम सबके सामने हैं। सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी फरीना। और आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको इतिहास और विज्ञान से जुड़े दो महत्वपूर्ण दिवस के विषय में जानकारी देंगे। पहला है हूल क्रांति दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस। श्रोताओं, आज 30 जून है और ये तिथि हमारे देश के इतिहास की एक ऐसी शौर्य गाथा और बलिदान को याद दिलाती है जिसके सम्मान में हम हर साल 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाते हैं। वर्ष 1855 में आज ही के दिन झारखंड के भोगनाडीह गांव में अंग्रेजी शासन, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संथाल समुदाय ने ऐतिहासिक जनविद्रोह की नींव रखी। इस महान क्रांति का नेतृत्व सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने अपने भाइयों चांद और भैरव के साथ किया। शुरुआत में तो ये लोग बहुत कम थे, लेकिन देखते ही देखते 400 गांवों से हजारों आदिवासी इस क्रांति से लगातार जुड़ते चले गए। इस क्रांति का उद्देश्य केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं था, बल्कि अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना भी था। इस क्रांति में अंग्रेजों से मुठभेड़ में जहां चांद और भैरव लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को कठोरता से दबा दिया, लेकिन इन वीर आदिवासियों की वीरता और बलिदान ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की चेतना की पहली ऐतिहासिक इबारत लिखी थी। हम देश के इन वीर आदिवासियों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हैं, उनकी वीरता और शहादत को दिल से सलाम करते हैं और ऐसे वीरों को जन्म देने वाली अपनी धरती के लिए यही कहते हैं कि सदियों से ऐसे वीर महापुरुषों को जो जन्म दिया करती है, सदियों से ऐसे वीर महापुरुषों को जो जन्म दिया करती है, वो सबसे प्यारी, सबसे न्यारी मेरे देश की धरती है।

0: गीत के बाद अब जानकारी दूसरे महत्वपूर्ण विषय की, जो हमें धरती से आसमां तक की यात्रा पर ले जाती है। साथियों, 30 जून का संबंध साल 1908 की टुंगुस्का की घटना से भी है। रूस के साइबेरिया में टुंगुस्का में एक विशाल क्षुद्र ग्रह विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट हो गया था। 2016 में इसी ऐतिहासिक घटना की याद में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाने की आधिकारिक मान्यता दी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम आदमी से लेकर वैज्ञानिक समुदाय तक ये समझाना है कि कैसे अंतरिक्ष की चट्टानें हमारे धरती से टकराकर एक बड़ी तबाही का कारण बन जाती है। ग्रह रक्षा और क्षुद्र ग्रह प्रभाव का खतरा, इस वर्ष की ये थीम हमें यही प्रेरणा देती है कि सतर्कता के साथ वैज्ञानिक सहयोग से हमें अपनी धरती और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं एक संदेश की तरफ।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में अभी भी है बहुत कुछ शेष। चलिए चलते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिथि विशेष।

रोजाना की तरह ही तिथि विशेष के इस सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे आज की तिथि यानी 30 जून से जुड़ी इतिहास और बीते समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। साथ ही आज ही के दिन इस दुनिया में जन्मे और इस दुनिया को अलविदा कहने वाले सफल महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में। फ्रांस के चार्ल्स ब्लोडिन को दुनिया के एक साहसी और अद्भुत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। 30 जून 1859 को चार्ल्स ब्लोडिन ने नियाग्रा फॉल्स में 160 और 200 फीट दूरी के बीच एक रस्सा बांधकर उसको पार करके लगभग 1100 फीट की दूरी तय की थी। ये दूरी तय करके ऐसा अद्भुत करतब दिखाने वाले आप दुनिया के पहले व्यक्ति रहे हैं। साल 1914 में 30 जून को ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करते समय पहली बार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथियों, संसद लोकतंत्र का वह मंच है जहां जनता के प्रतिनिधि मिलकर देश की नीतियां, कानून और योजनाएं तय करते हैं। 30 जून ही वह तिथि है जब हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस। यह दिवस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 30 जून 2018 में की गई थी। सोशल मीडिया आज दुनिया को जोड़ने का एक अनोखा और प्रभावी माध्यम है। 30 जून 2010 में इसकी वेबसाइट मैशेबल की शुरुआत की गई, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 30 जून को सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है। अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़ दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, अर्थशास्त्री और एक महान समाज सुधारक रहे हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ऑफ इंडिया आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आज ही की तिथि 30 जून 1917 में इस दुनिया को अलविदा कहकर आपने सभी की आंखों को नम कर दिया था। अब बात करते हैं उन सफल व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में जन्म लिया। प्रसिद्ध कवि और लेखक वैद्यनाथ मिश्रा, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में नागार्जुन नाम से जाना जाता है, युग कवि के रूप में विश्वविख्यात वैद्यनाथ मिश्रा यानी नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। क्रिकेट के मैदान में अपनी आतिशी से शतक लगाने वाले श्रीलंकाई ऑलराउंडर सनत जयसूर्या का आज जन्मदिन है। 1969 में जन्मे सनत जयसूर्या का नाम एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक और तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आता है। कल्याण जी आनंद जी की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी को भला कौन नहीं जानता है। इनमें कल्याण जी शाह 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जन्मे थे। बचपन से ही सुरों की दुनिया का फनकार बनने का सुरीला सपना देखने वाले कल्याण जी वीर जी शाह को उनके सुरीले हुनर के लिए भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री से नवाजा था। तो आइए उन्हीं के सुरों से सजे एक गीत का आनंद लेते हैं, जिसकी खुशबू आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, समय है 7:50 और हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट यानी आज के अखबारों की सुर्खियों की तरफ। तो बढ़ते हैं

इस सेगमेंट में ही चलिए डाल लेते हैं आज के अखबारों पर नजर और जान लेते हैं क्या क्या कहती है आज की ताजा खबर। पहले जान लेते हैं कि दैनिक जागरण क्या कहता है। दैनिक जागरण कहता है कि पहली गलती पर जुर्माना नहीं, मिलेगा सुधार का मौका। केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बड़ा सुधार करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। पहली बार होने वाली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर कारोबारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे दैनिक जागरण लिखता है, जुलाई में 4.43% कम देना होगा बिजली का बिल। महंगाई की मार से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जून में 10% ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई में 4.43% कम बिल देना होगा। आगे दैनिक जागरण लिखता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भेजे जा सकते हैं वाहन। 30 जुलाई से

के शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार मेरठ, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर के वाहन आसानी से दिल्ली और देहरादून की तरफ आ जा सकेंगे। अब खबर हिंदुस्तान से। गर्मी में 7:30 बजे से 12:30 तक ही खुलेंगे स्कूल। गर्मी को देखते हुए जिला अधिकारी बिजनौर जसजीत कौर ने कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों के स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 12:30 तक कर दिया है। हिंदुस्तान की ही अगली खबर है, दो भाषाएं ही पढ़ेंगे 10वीं के छात्र। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को त्रिभाषा नीति से बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन छात्रों को पहले की तरह ही दो ही भाषाएं पढ़नी होगी, उन्हें तीसरी भाषा लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब खबर अमर उजाला से, यूपीआई के जरिए 2 से निकलेगा पीएफ। उम्मीद है कि 2 जुलाई से यूपीआई के जरिए सदस्यों को पीएफ खाते का पैसा निकासी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट कर रहा है। आगे अमर उजाला लिखता है, यूजी में मेरठ की कीरत, पीजी में बलिया के शिवम अव्वल। बांदा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित UPCATET 2026 का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित हो गया है। इसमें कंकर खेड़ा मेरठ की कीरत मसंद ने स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि कन्नौज की प्राची द्विवेदी द्वितीय तथा रामपुर के मोहम्मद कैफ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये खबर भी अमर उजाला से ही है, बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई, यात्रा 3 जुलाई से शुरू। पवित्र अमरनाथ गुफा में मंगलवार को प्रथम पूजा की गई, इसके बाद अब 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और ये खबर भी अमर उजाला से ही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ओलंपिक में मिली जगह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में चल रहे T20 विश्व कप में शीर्ष एशियाई टीम के तौर पर 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये अंतिम खबर हमने ली है हिंदुस्तान से, तक्ष्वी ने स्केटिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली 8 साल की तक्ष्वी वाघानी ने लिम्बो स्केटिंग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगे बार के नीचे से स्केटिंग करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और श्रोताओं, आप जानते हैं कि हर तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है और सब यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश जल्द से जल्द आ जाए, तो हम भी यही आरजू करते हैं कि गर्मी थोड़ी कम हो जाए और थोड़ी सी ठंडक आ जाए। हर तरफ हर्षय तरस रही है, अब तो ये मेघा बरस ही जाएं।

श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का ये साथ पसंद आया होगा। बारिश की ठंडी फुहारों जैसी ताजगी आपकी जिंदगी में भी बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फरीना लेती हूँ कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत आपसे।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत

0: एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि से देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।

0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
4: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
3: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
5: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Deshai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
6: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
3: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
7: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026. Following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city. For the benefit of its residents, we have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
3: The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between 5th of August to 4th of September. Final electoral roll will be published on the 7th of October. He informed that electors can also fill enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians, including women and children, and injured 163 others. In a statement, External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The Army said that such reports are incorrect and without any basis. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. We have a report.
8: The President will grace the maiden convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam today. Degrees will be awarded to 373 students who completed their undergraduate and postgraduate programs between the 2020 and 2025 academic years. She will also present gold medals to 13 meritorious students, including 10 women, for their outstanding academic performance. Established in 2019 with its headquarters at Vijayanagaram, the Central Tribal University of Andhra Pradesh commenced academic activities in 2020. The convocation marks a significant milestone in the university's academic journey. Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, and several other dignitaries are expected to attend the ceremony. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
3: Union Health Ministry has directed all central government departments and institutions to comply with the Supreme Court's guidelines on stray dog attacks by today. The directive comes as authorities work to strengthen measures aimed at addressing stray dog attacks, public safety and compliance with judicial directions. All concerned departments have been asked to ensure that the Supreme Court's guidelines are implemented within the stipulated deadline. The order comes after a Supreme Court ruling last year that aims to make public spaces safer, especially for children and patients who use them every day. Every year on the 30th of June, Jharkhand observes Santhal Revolution Day, Hul Divas, to commemorate the sacrifice of tribal revolutionaries. We have a report.
2: In the Bhognadi village of Sahibganj district of Jharkhand, like every year, thousands of people will gather today to pay tribute to the immortal martyrs of the Santhal Hul, Sidhu Kanhu, Chand Bhairav, Phulo and Jhano. It was on 30th June 1855 that Sidhu and Kanhu launched the Santhal Hul from Bhognadi against British rule and the exploitative money lending system, a movement that many scholars of tribal history regard as India's first organized war of independence. Historians say that after an assembly of nearly 20,000 people, an armed struggle began against the British, with Santhals and several other local communities joining the uprising. Armed with bows, arrows and traditional weapons, the revolutionaries mounted a strong challenge to the East India Company's forces, and the movement continued for nearly a year. During the struggle, Chand and Bhairav attained martyrdom, while Sidhu and Kanhu were later captured and executed by the British. Hul Divas is regarded in Jharkhand as a symbol of self-respect, resistance and tribal identity, and a variety of programs are organized across the state, especially at Bhognadi, to mark the occasion. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
3: President Draupadi Murmu has paid a tribute to the immortal heroic men and women of the Sidhu Kanhu, Chand Bhairav and Phulo Jhano and Santhal rebellions for the sacrifices and martyrdom. The President said that they waged a historic struggle against the exploitation of tribal society and to protect the identity. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the martyrs of the Santhal Revolution on the occasion of Hul Divas. He also remembered all those who sacrificed everything for tribal identity and the motherland. The United States and Iran will hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over the Strait of Hormuz. The meeting comes amid renewed tensions between the U.S. and Iran over the waterway through which 20% of the world's crude oil flows. The dangerous period of violence that began on Thursday disrupted U.S. President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Traffic in the Strait of Hormuz fell during the tit-for-tat strikes, slowing the recovery of the waterway. Iran and U.S. exchanged missile strikes over the weekend, collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, U.S. and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, U.S. last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
9: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
3: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मग़रिबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राजील जापान को 1-2 दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है।
10: اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم سے متعلق عائد عارضی ضابطہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ یکم جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر

0: हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदारा जाती और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी जाब्ते नाफिज किए गए थे। इन इकदामात का मकसद डीजल की कालाबाजारी, जखीरांदोजी और गैर कानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सार्फीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मसवदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक ये कमेटी शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने समेत मजमुई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसवदा तैयार करेगी। अलबत्ता वज़ीर आला ने वाज़े किया कि दर्ज फहरिस्त कबायल, आदिवासी, कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबायल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनत को फरोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निजाम में उभरती टेक्नोलॉजी को मरबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। वजारत ने कहा कि इन इकदाम का मकसद भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबिकती बनाना, बिलखसूस छोटे शहरों और देही इलाकों में सिनेमा के बुनियादी ढांचे में सरमाकारी की हौसला अफजाई करना है। प्रसार भारती के चेयरमैन पुरसुन जोशी की सरबराई में एक आला सतह स्टडी कमेटी ग्रुप तश्कील दिया गया है जो भारतीय सिनेमा को दरपेश चैलेंज और मौके का मुताला करेगा। ये शोबे को मजबूत बनाने के तरीके तजवीज़ करेगा और भारतीय फिल्मों को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश करेगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: कौमी राजधानी खत्ता दिल्ली में वोटरों के जाती मालूम से मुतक फार्म घर घर जाकर तकसीम करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बूथ सतह के ऑफिसर्स BLO आज से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और जाती तफसीलात से मुतालिक फार्म तकसीम करेंगे और अहल राय दहिंदगान से पुर किए हुए फार्म वसूल करेंगे। दिल्ली काबीना ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यकम जुलाई से शुरू होने वाली इस दूरंदेशी पर मबनी स्कीम के तहत कौमी राजधानी दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक पूरी तरह से कार्बन के सिफर अखराज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खास तौर पर कार्बन के सिफर अखराज वाली गाड़ियों पर मरकूज है। इसका मकसद दिल्ली को बतदरीज आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करना है ताकि इससे लोगों को फायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 4 वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमुई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी EV पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस EV इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस EV पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की

जब फिजाओं में ठंडी हवाओं की खुशबू घुल जाए, बादल आसमान को अपने आगोश में ले लें और मौसम की ये खामोशी दिल की धड़कनों को छूने लगे, तब हर लम्हा खास लगने लगता है। और इन खास लम्हों में दिल यही ख्वाहिश करता है कि ऐ दिल, मेरे हमसफर को कहीं से ढूंढ ला।

कमाल अमरोही के लिखे गीत गुलाम मोहम्मद के संगीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: किसानों हर पल चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: दोस्तों, गोल्डन हिट्स की महफिल में अब बारी है एक ऐसे गीत की, जिसकी धुन सुनते ही होठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं। मस्ती, शरारत और प्यार भरे अंदाज से सजा ये नगमा आज भी उतना ही ताजा लगता है जैसे पहले हुआ करता था।

0: एसएच बिहारी के गीत ओपी नैयर के संगीत में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मर्यादा में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

श्रोताओं, कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर लफ्जों से नहीं नजरों से होती है, और जब नजरें अपना जादू चला दें तो दिल को संभालना तो मुश्किल ही हो जाता है। तो पेश है फिल्म मेरा साया का एक ऐसा ही चुलबुला और सदाबहार नगमा जो आपसे यही कह रहा है

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म मेरा साया में। राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए गीत को, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

महबूब की मेहंदी में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। श्रोताओं, देखते देखते कार्यक्रम में अब विदा लेने का समय आ पहुंचा है, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे और इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने बोलों में समेटे हुए है आज का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आया सावन झुमके से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आया सावन झूम के इस फिल्म के गीत के साथ ही आज का मधुर गीतों का सफर अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। समय सुबह के 9:15 होने को है। कुछ ही क्षणों में सुनिएगा जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
1: कन्नौज जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन एवं योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति अमूल्य धरोहर है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। शास्त्रों में भी स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगर निकायों, ग्राम पंचायतों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी और विकसित सघन खेत बचाओ अभियान विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदर्शनी में भूमि संरक्षण, कृषि पर्यटन, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना सहित विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना रहा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के अवसर पर ठठिया मंडी में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को आलू की नई किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की, साथ ही खेती में नई तकनीकों को अपनाने की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने ठठिया मंडी को आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्णय पर उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने कहा कि
2: कन्नौज में आलू की किसानी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो नए बीज लेकर के आई, नई पद्धतियां बता रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी इस मंडी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे आलू के लिए।
1: उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और आलू प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने बताया कि आलू सब्जी या चिप्स निर्माण तक सीमित नहीं है, इससे स्टार्च सहित अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज में प्रस्तावित स्टार्च प्रसंस्करण इकाई से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कन्नौज जिले में भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक अनुदान मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना और कम लागत में उपज को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 90% तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान का प्रावधान है। चालू वर्ष में 571 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और उद्यान विभाग ने सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि
3: प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पोर्टेबल सिंचाई के लिए पोर्टेबल पाइप है, इसमें 65% और 75% की सब्सिडी है, और दूसरा हमारा ड्रिप और तीसरा हमारा मिनी स्प्रिंकलर है, तो इसमें 80% और 90% की छूट है। जो हमारे कृषक भाई 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, उनका सब्सिडी स्लैब अधिक 90% और 75% स्लैब आएगा, और जो बड़े कृषक हैं उनका जो है 65% और 80% है।
1: अब तक 223 किसानों के खेतों में प्रणाली स्थापित कर उन्हें लाभान्वित भी किया गया है, जिससे जिले का 234 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ गया है। पिछले साल 1000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 705 किसानों को लाभ मिला था। कन्नौज जिले में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एवं एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के नौनिहालों एवं मातृशक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्टफोन उपलब्ध होने से कार्यकर्तियों को विभागीय योजनाओं के संचालन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने में और अधिक सुविधा होगी। तकनीक के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं गति आएगी, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा। कन्नौज जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जनपद में तम्बाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को तम्बाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गयी। 29 मई से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित हुई।
0: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
4: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ से अधिक लागत की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बांग्लादेश से कई दशक पूर्व विस्थापित 4693 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे और 100 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है।
5: पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इन सब के लिए आपको बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
4: उन्होंने कहा सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस अवसर पर पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
6: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
4: सरकार की जनहितकारी नीतियों और अनुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। पीलीभीत जिले में गोमती नदी को उद्गम स्थल से अविरल बहाने और स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी घाटों पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता मेलों का आयोजन किया गया। इनमें नदी की स्वच्छता और सफाई खुदाई के कार्यों का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से जी राम जी योजना के तहत नदी की खुदाई और साफ सफाई के काम प्रारंभ होंगे। नदी के सभी 16 घाटों पर प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई गई है। गोमती नदी के माधवडांडा स्थित उद्गम स्थल पर ग्रीष्मकालीन गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां स्कूली बच्चों की गोमती पर आधारित प्रतियोगिताएं कराई गई और ब्रज की रासलीला मंडली द्वारा सुंदर लीला मंचन किया गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा और SDM परमेश कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर गोमती नदी को सजाने, संवारने और स्वच्छ रखने के लिए सभी 16 घाटों पर 10-10 गोमती मित्रों की तैनाती युवा कल्याण विभाग द्वारा करने की घोषणा की गई। अब तक घोषित किए गए 82 गोमती मित्रों को परिचय पत्र वितरित किए गए। पीलीभीत जिले में गन्ने की फसल के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 2 लाख किसानों के खेतों तक गन्ना विकास विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि गन्ने के साथ गेंदे की मिलवा खेती करके किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार शामिल हुए। गांव से शहर तक स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के चलते 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आमदनी पर संतोष व्यक्त किया।
7: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र काफी अच्छा गया है। जहां तक हम लोग बात करते हैं राजस्व की, राजस्व हमारा जो है पिछले साल तुलना में करीब 5 लाख रुपए अभी तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस बार जो विशेषता रही है पर्यटन सत्र की, उसमें खास बात रही है कि जो टाइगर के बच्चे हैं वो काफी अच्छी संख्या में दिखे हैं और काफी जगहों पे दिखे हैं। करीब 4 बाघिन ऐसी रही है जिनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यटन सत्र पर्यटकों की संख्या के लिहाज से और जो है साइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गया है।
4: उन्होंने कहा इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अच्छी साइटिंग होने से सैलानी काफी प्रभावित हुए।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
8: ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम धरती गाती में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं नयनतारा शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है लोक गीतों का और इसमें अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू, गांव की चौपालों की रौनक, खेत खलियान की महक और लोक जीवन की मधुर परंपराओं को हम समेट कर लाते हैं। लोकगीत केवल सुर और शब्द नहीं होते बल्कि हमारी लोक संस्कृति, रीति रिवाज, रिश्तों और भावनाओं की अमूल्य धरोहर होते हैं। इनमें कभी हंसी ठिठोली होती है, कभी प्यार का इजहार, तो कभी परिवार और समाज की मधुर झलक। तो आइए रुहेलखंड की इसी लोकधुनों से सजी महफिल का आगाज करते हैं इस पहले लोकगीत के साथ।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज अपने श्रोताओं को हम लेकर जा रहे हैं रुहेलखंडी लोकगीतों के सफर पर। तो चलिए बढ़ते हैं सफर में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये बिना किसी बनावट के सीधे आप तक, दिल तक पहुंच जाते हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत को खुद में संजोए हुए हैं। रुहेलखंड के लोकगीतों में अपनापन है, सादगी है और जीवन के हर रंग की झलक है। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला मनभावन रुहेलखंडी लोकगीत।

साथियों, लोक संगीत हमारी संस्कृति की वो अमूल्य धरोहर है जो समय के साथ भी अपनी मिठास और पहचान को और ज़्यादा करीब ले आती है। उम्मीद है रुहेलखंडी गीतों की इन सुरीली लोक धुनों में आपको अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनों की यादों को एक बार फिर से जोड़ दिया होगा। तो कार्यक्रम में चलते चलते सुनवाते हैं आपको ये भक्तिमय रुहेलखंडी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हमने आपको सुनवाए नयनतारा शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 10 बज रहे हैं। पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हर खत में छिपा है अपनापन,
1: हर संदेश में महकता है आपका प्यार।
0: अपनी पसंद की धुनों में खो जाने को आप हैं आज फिर से बेकरार,
1: क्योंकि श्रोताओं आपकी पसंद से सजेंगे आज गीतों के सभी नजारे।
0: लेकर हाजिर हैं हम आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है
2: गीत तुम्हारे।
0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और आज के इस सफर पर आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ मैं फरीना, और मेरे साथ है,
1: जी हाँ आपके साथ श्रोताओं मैं हूँ और फरीना के साथ कार्यक्रम में रेणु कोटनाला। नमस्कार आप सभी श्रोताओं को।
0: तो रेणु जी, कार्यक्रम का पहला गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में, जिसको हमने लिया है फिल्म परदेसी बाबू से। और इस गीत के लिए हमें ये प्यारे प्यारे पत्र, जरा देखिए किसने भेजे।
1: जी हाँ, ये बहुत सारे फरीना मेरे हाथ में खत हैं, और ये जो पहला खत कार्यक्रम में मैं शामिल कर रही हूँ वो मैं लिखा है अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, और बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। गंजुड़वारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शमो परवीन शेख, अलकमर बेगम, अफसाना महजबी, मिर्जा नसरीन बेगम, अरहान शेख और आलिशान शेख। और ये एक और पत्र मेरे हाथ में है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे और इनके साथी खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके बहुत सारे साथी।
0: ये पत्र आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां का, गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से आप हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेश रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। ये पत्र भेजा है जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
1: ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर से ये खत दोबारा हमारे हाथ में आ गया फरीना, और आपने जिसे शामिल कर लिया। शेरकोट जिला बिजनौर से इसरार अहमद,

0: रेनू जी,
1: जी
0: गीत सुनवाने के चक्कर में अपने श्रोताओं की फरमाइश पूरा करने में मैं तो नंबर बताना ही भूल गई।
1: बिल्कुल फरीना, हम सोच ही रहे थे कि श्रोताओं को नंबर भी बता दें, लेकिन आपने तब तक कार्यक्रम शुरू कर दिया। लेकिन देखिए ना, हमने नंबर बताया भी नहीं और स्क्रीन पर लगातार इतने सारे मैसेजेस हमारे श्रोताओं के आ गए हैं। लेकिन फरीना, हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया होगा, है ना। अब वो सोच रहे होंगे कि वो भी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे जुड़े, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें नंबर बता दिया जाए।
0: हाँ हाँ, और अपनी गलती का भी सुधार कर लिया जाए।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, नंबर फरीना आपको बता रही हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए और भेजिएगा अपनी पसंद का गीत जो आप कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं।
0: तो श्रोता, हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 9457078288। और श्रोताओं, अगर आप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं पत्रों के माध्यम से, तो इसकी परंपरा जारी रखेंगे आप इस एड्रेस से जो रेनू जी बताएंगी।
1: जी हाँ श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम की तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। आपके प्यारे प्यारे पत्रों का हम इंतजार रहेगा जो कि हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन फरीना, स्क्रीन पर हमारे श्रोताओं के मैसेज आ गए हैं और चलिए शामिल कर लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज जो कि हमें आया है, कमर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म हरियाली और रास्ता का गीत, आवाज़ मुकेश और लता की है। तो देखिए, हम अपने श्रोताओं को ज़रूर ये गीत सुनवाने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ श्रोताओं के मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं।
0: जी हाँ, कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं बड़ापुर बिजनौर से मोहम्मद ताहिर, और उनके साथ हैं नगीना से रईस राहिर।
1: ये मैसेज हमें मिला है मजनुका टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
0: और ये फरमाइशी गीत सुनने के लिए मैसेज हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और नांदेड़ महाराष्ट्र से उनके साथ हैं उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये मैसेज हमें मिला है ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बिट्टू किट्टू का, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से।
0: कार्यक्रम का अगला मैसेज जो हमने शामिल किया है, ये हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से, आप हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
1: ये संदेश हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी का।
0: ये मैसेज अब आया है एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हुदा का, गुमला झारखंड से।
1: मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने लिखा है ये मैसेज नई बस्ती गंजडवारा से।
0: ये मैसेज भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, उनके साथ हैं दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय।
1: गांव और डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से श्रोता हैं हमारे जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर और इनके साथी।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है सालार पहलगाम कश्मीर से परजादा मिराजुद्दीन और उनके साथियों ने।
1: गया रोड छतरपुर बुंदेलखंड से हमारे श्रोता हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम बड़े भैया और इनके साथ हैं शीला, जसोदा, अनुष्का, मोहनी, गोलू, नीरज, काजल, करण और इनके सभी साथी।
0: और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं गांव खारिया ढाणी से, जिला सिरसा हरियाणा से ये मैसेज भेजा है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या ने।
1: संदेश हम तक पहुंचा है कोका भिलाई से हमारे श्रोता हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि और अमित।
0: तो आइए आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म हरियाली और रास्ता में लता मंगेशकर और मुकेश को।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, और कार्यक्रम है गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम में आज श्रोताओं आपके साथ मैं हूँ रेनू कोटनाला,
4: और मैं हूँ इनके साथ फरीना।
3: तो फरीना, आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से गीतों का सिलसिला और व्हाट्सएप मैसेजेस का सिलसिला। और ये मैसेज हमें मिला है, लिखा है शेरवानी स्कूल गंजडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। और इन्होंने लिखा भी है कि फरीना और रेनू जी को हमारा नमस्कार। तो नमस्कार एक बार फिर से आपको। और भाई मैसेजेस फरीना बड़े अच्छे आ रहे हैं, देखिए तो क्या लिखा है इन्होंने।
4: इन्होंने लिखा है कि आप दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रही हैं, तो इनको जो गीत सुनना है वो गीत है फिल्म महबूबा से, आवाज़ उदित नारायण अलका याग्निक की है। और इनको इन्होंने जो मैसेज भेजा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वन्ना काले, आदेश काले, प्रोफेसर वसुदा वज्रसेन, ये फूलों भरा मैसेज इन्होंने हमें भेजा है।
3: तो भाई देखिए, दिन की शुरुआत तो फूलों से हो गई और उससे

0: ज़्यादा फरीना खास ये है कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के लगातार इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो दिन तो खूबसूरत होगा ही,
1: बेशक
0: दिन खूबसूरत होगा तो प्रोग्राम भी जायज है कि खूबसूरत ही होने वाला है। शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। और अगला मैसेज ये हमें मिला है, हमारे श्रोता है नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से, हमारे श्रोता का मैसेज एक बार फिर से शामिल हो गया ताहिर और इनके साथी। भाई श्रोताओं, आपसे गुजारिश है कि एक बार अगर आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल हो गया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ दोबारा मैसेज ना करें। ये मैसेज हमें आया है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, ग्राम महेशपुर खेम से, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी।
1: और ये अगला फूलों भरा मैसेज, क्या बात है रेनू मैम, आज सारे मैसेज फूलों भरे आ रहे हैं। तो ये मैसेज हमें भेजा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाश।

0: महेशपुर खेम से हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं तौफिक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी।
1: और ये अगला फूलों भरा मैसेज क्या बात है रेनू मैम, आज सारे मैसेज फूलों भरे आ रहे हैं। तो ये मैसेज हमें भेजा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी वारसी।
0: गुलाम हसन, निशाद बानो, मोहम्मद सलमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा हमें मैसेज कर रही हैं मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेजा है मालियान सरदा मेरठ अनिल जैन, मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन ने।
0: और एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में, विलेज और पोस्ट राहु नंगली से हमारे श्रोता हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान का।
1: और ये मैसेज जो हमने लिया है ये है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, मीनाक्षी मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और उनके साथ हैं बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से ही मनभावन शोभा, कपिल नैना, सत्यनारायण फुंदी बाई बागरी। तो आइए श्रोताओं आप सबको सुनवाते हैं ये गीत इन श्रोताओं की फरमाइश पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आप सुन रहे हैं अपने पसंद के गीतों से सजा सवरा कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम का अगला गीत रेणु जी हमने लिया है फिल्म आरजू से, आवाज है मोहम्मद रफी की। और इस गीत के लिए ये फरमाइश भेजी है हमें कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सानी, मोहम्मद अफजल मलिक ने।
2: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर का।
1: ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोणाना।
2: गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे श्रोता गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार से।

0: लिखा है गांव जैवरा हिसार से।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा से सुरेश चौरासिया, सरोज चौरासिया, सुबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा चौरासिया, शिवानी चौरासिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक काश गंजी का।
0: मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर का ये मैसेज आया है हमें मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से।
1: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज भेज रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से उनके साथ हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
0: और फरीना देखो ना, प्रोग्राम में व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोता अपने मैसेज तो हमें भेजते ही हैं, साथ ही साथ कुछ श्रोता हमें फूल भेजते हैं, कुछ फल भेजते हैं। मतलब ये उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं जो मैसेजेस के माध्यम से हमें मिलती हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे ऐसे सभी श्रोताओं का। और एक और श्रोता का मैसेज गुलाब के फूलों के साथ हमें मिला है, कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता है सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी देवाना का।
1: तो क्यों ना इन सब की फरमाइश से कार्यक्रम में उस गीत से महका दें जो ये सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलिए सुनिएगा मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरजू का ये गीत।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और फरीना अपने श्रोताओं को एक बार फिर से संदेश भेजने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए अपने श्रोताओं को पता एड्रेस तो आप बताएंगी, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए नंबर हमारा क्या है वो हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, नोट कीजिए हमारा नंबर, क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट आपके लिए और हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज है हम करने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से नोट करें, नंबर है हमारा 9457078288।
1: और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं अपने प्यारे प्यारे एहसासों से बुनकर, जिसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467763। तो कार्यक्रम का जो अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं रेनू जी, उसके लिए फरमाइश किसने भेजी है?
0: पहले हम बता देते हैं कि कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फरमाइश पर। फिल्म है राजा हिंदुस्तानी और ये सुनना चाहा है हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिफान आलम और नगमा शमसी, समीर आलम चंडीगढ़ से।
0: बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।
1: और ये हमारे श्रोता हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत।
0: सहेली रेडियो श्रोता संग बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से मैसेज मिला है हमें बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्रिका।
1: ये मैसेज हमें भेजा है पारस मणि रेडियो श्रोता संघ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से आप हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा।
0: नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। और उनके साथ ही हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना।
0: एक और संदेश हम तक पहुंचा है और ये संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, प्रणय प्रसिद्धि और हिरामन शिंदे का।
1: और रेनू जी आप देख रही हैं सबने तो भेजे हैं फूल और इन्होंने हमें बादल भेजे हैं।
0: बादल भेजे और उम्मीद है कि फरीना हो सकता है कि ये बादल थोड़ी देर में बरस भी जाए। हाँ। चलिए इसी ख्वाहिश के साथ अगला जो मैसेज है एक और शामिल कर लेते हैं अपने श्रोता का। हाँ,
1: ये अगले मैसेज की बरसात हम पर की है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान ने।
0: तो हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं आप भी सुनिए ये प्यारा सा गीत
1: राजा हिंदुस्तानी से, जिसको आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: और श्रोताओं, ये अगला मैसेज कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, और हमारे श्रोता हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: ये अगला मैसेज हमें भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का।
0: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ये संदेश हम तक पहुंचा है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, बेबी गर्वी और कल्पित चौहान का।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेजा है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने।
0: दादरी गेट भिवानी से हमारे श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य। और रेणु जी, ऐसा लग रहा है कि सभी चाहते हैं हम जल्दी जल्दी उनकी फरमाइश पूरा कर दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखिए ये मतलब एक नाराजगी भरा मैसेज हमें भेजा है।
0: अच्छा, ये कौन हमारे श्रोता है?
1: आप ही पढ़िए।
0: ये हमारे श्रोता है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, और बहुत प्यारे पुराने श्रोता है हमारे हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर मोहम्मद जैन और जन्नत।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं खेलपत बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से उनके साथ हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का।
0: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेबी राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
0: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से श्रोता है हमारे रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और ये पैसेज हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं कि ये ऐसी आशा करते हैं कि हम इन्हें निराश नहीं करेंगे, और हम इनका मैसेज पढ़ चुके हैं, इन्होंने दोबारा मैसेज कर दिया है।
0: अच्छा फरीना, हमारे श्रोता, एक श्रोता ने अभी लिखा कि अगर आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम आपको सुनना बंद कर दें? भाई देखिए, ऐसा नहीं है श्रोताओं, स्क्रीन पर इतने सारे मैसेजेस होते हैं और सभी मैसेज हमारे लिए बहुत बहुत खास होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी हमारा इरादा नहीं होता कि हम किसी का संदेश कार्यक्रम में ना शामिल करें। हाँ, कभी कभी मैसेजेस होते हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है फरीना कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा मैसेज अपने श्रोताओं के शामिल करें, है ना।
1: हाँ, हाँ।
0: तो कुछ मैसेज और ले लेते हैं और फिर आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: जी हाँ, तो ये मैसेज हमें भेजा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अब्बासी, यशफ अब्बासी। और ये जो धमकी भरा मैसेज हमें भेजा है, ये हमें भेजा है, देखिए ये है जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से, पढ़िए इनका नाम।
0: हाँ, ये हमारे श्रोता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। और फरीना, ये अगर शिकायत कर रहे हैं कि इनका मैसेज शामिल नहीं हुआ, तो भाई हमारे जो श्रोता इनका नाम सुन रहे हैं ना, वो भी जरूर सोच रहे होंगे कि ये शिकायत बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे ये जो मुकेश कश्यप श्रोता हैं लगातार हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, है ना।
1: और देखिए नाराजगी के साथ फूल भी भेज रहे हैं।
0: यानी ये बहुत प्यारी सी नाराजगी है, और चलिए अगर हमारे श्रोता हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनकी नाराजगी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में,
1: और नाराजगी भी अपनों से की जाती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और प्यारा सा मैसेज हमारे श्रोताओं का मिला है हमें,
1: ये भेजा है
0: रेलवे रोड गंजुंडवारा से,
1: ये है मोहम्मद कलीम बख्शी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज, सरिता गौतम। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं मोहल्ला बारादरी से महमूद खां, रामपुर जगह से इन्होंने हमें भेजा है, और फरमाइश करते हैं रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली, नगमा नास मंसूरी। और मैम देखिए एक और धमकी भरा मैसेज आ गया कि हम बात नहीं करेंगे अगर आपने शामिल नहीं किया।
0: देखिए श्रोताओं, लगातार आपके मैसेज कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अगर कभी ऐसा छूट जाए तो आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, फिर से भी मैसेज कर दें, हम ज़रूर आपका मैसेज कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और ये मैसेज हमें मिला है शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से, शिकायत भरा आसिफ चौधरी साहब का, और इनके साथ हैं बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। तो आप नाराज़ बिल्कुल ना हो, हर कार्यक्रम में आपके मैसेज शामिल होते हैं। और लीजिए आज भी हो गया।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेजा है गंजडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातमा, अदनान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी ने। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और उनका समस्त हाशमी परिवार।
0: ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असरार और नरगिस खातून।
1: और ये फरमाइशी मैसेज हमें भेज रहे हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। ये अगला मैसेज रेणु जी,
0: हाँ ये मिला है हमें डॉक्टर दिनेश काली का जलगांव जंक्शन से, और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने लिखा है, तारीफ भी लिखी है, तो बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए।
1: और कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, मोहम्मद कलीम, नाला सुपारा, मुंबई से।
0: ये संदेश हम तक पहुंचा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, हमारी श्रोता हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और इनके साथ हैं दिनेश।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा का। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आपके मैसेजेस शामिल करें। अगर कुछ श्रोताओं के मैसेज रह गए हों तो उनके पास एक और मौका है कल का, तो कल फिर कोशिश कीजिएगा, आपके मैसेज ज़रूर शामिल होंगे। फिलहाल दीजिएगा फरीना को कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त और बने रहिएगा रेनू कोटनाला जी के साथ।
1: तो, बिल्कुल, शुक्रिया फरीना, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, अब पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में।

0: नितिन मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म दरिया दिल का गीत। गीत लिखा था विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हम आपके हैं कौन, आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना देव कोहली की और संगीत था राम लक्ष्मण का। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। स्वर अभिजीत और साधना सरगम का है, गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का।

नदीम शमर का संगीतबद्ध किया हुआ समीर का लिखा गीत आपने सुना। कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म थी फूल और कांटे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में आपने सुना फिल्म किस्मत का गीत। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म है मेजर साहब, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आनंद मिलिंद का।

उदित नारायण के गाये फिल्म मेजर साहब के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी,

0: जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी।
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,

0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तल फुला कर कुप्पा, गाँव गाँव गाँव। अरे पपी है, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, गाँव गाँव गाँव।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ,
0: काँ काँ काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का, का, का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: जाबाई पपी हना पिए तू जाबाई
1: काँ काँ काँ अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली
2: बहु बहु बहु अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं
1: गाँव गाँव गाँव कुत्ते देख नहीं रहे शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे गाँव गाँव शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ पपीहे सुन पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी
2: इसकी यही सजा हो
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था नदी नाले सब सूखने लगे भयंकर लू चलने लगी जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे
1: गाँव गाँव अरे वो देखो वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है गाँव
5: हाँ और किसी जंगल में पानी नहीं है ना सारे जानवर यहीं आ रहे हैं

0: भयानक गर्मी है ना।
1: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
2: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
0: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
2: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
0: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की,
2: काँव काँव। हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: इश्क न पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा।

0: जी
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की होगी। समय याद रखिएगा, आज रात्रि 10 बजे।

रात्रि 9:30 पर आर्काइव्स के अंतर्गत नाटक सुनिएगा बंदी। प्रस्तुतकर्ता होंगी माधुरी बर्थवाल, प्रस्तुति सहयोग रहेगा रजनीश गुप्ता का।

संध्या 7:32 पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजक होंगे श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद बिजनौर। वाचन स्वर और संकलन होगा राजवीर सिंह का। 6:45 पर आज शाम श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हमारे श्रोता सुनेंगे। वाचन स्वर और संकलन राजवीर सिंह का रहेगा।

कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड 8 प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ।

युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा, बूझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक। सुर सर्कल में प्रतिभागी होंगे मोहित राजपूत, दिव्यांशु, खुशी गुप्ता, उमंग चौहान और वंशिका सोती। संचालन रहेगा नंदिनी माहेश्वरी का। रहस्य सीरीज का सीजन 2 प्रसारित किया जाएगा भूल भुलैया। आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद आदिल सैफी का होगा और कहानी के उस पार में कान के कंगन का भाग 2 हमारी युवा श्रोता सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम का समय आपको फिर बता देते हैं, आज शाम 5:15 पर।

संध्या 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। समय याद रखिएगा, आज शाम 5 बजे।

हैं हमारे लोक धारा कार्यक्रम में आज दिन में 1:45 पर, दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम रहेगा आधी आबादी से। सुनिएगा श्रीमती पारुल शर्मा की वार्ता, डिजिटल युग में पेरेंट्स के सामने आने वाली समस्याएं। क्रम रहेगा चलते चलते और आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं आज दिन में 12:05 पर, सैनिकों के लिए कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर, एक ही कला कार्यक्रम में संध्या 6:55 पर, गीत संध्या कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर, एक ही फिल्म सिक्रम में और रात्रि 10:30 पर होगा आपकी फरमाइश। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों जय हिंद।
1: नफरत

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म थी देश प्रेमी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लक्की से। स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम का है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अदनान सामी।

किस्मत फिल्म का गीत श्रोताओं भी आपने सुना, आवाज आशा भोसले की थी।

श्रोताओं, भी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म और प्यार हो गया से, और आवाज थी आशा भोसले की। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आर्यन से। स्वर है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का, गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की गाय फिल्म आर्यन के इस गीत के साथ ही श्रोताओ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी के इस सुरीले सफर में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। आपके साथ कार्यक्रम में आज मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने में दिल में एक नई हलचल सी पैदा कर देते हैं, है ना? जी हाँ, कभी ये पहली मोहब्बत की याद दिला देते हैं, तो कभी किसी अपने की कमी को महसूस कराते हैं, कभी बीते हुए खूबसूरत पलों में हमें वापस ले आते हैं, तो कभी जो पल हम जी रहे हैं उनमें कुछ नई ख्वाहिशें भर देते हैं। कुछ ऐसे ही हैं आज के ये गीत। तो कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, किसी खास इंसान की मौजूदगी हमारी जिंदगी में कितनी अहम होती है, इसका एहसास अक्सर उसकी दूरी में होता है। जी हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास रहकर नहीं बल्कि दिल में बसकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किसी की याद, किसी की बातें और साथ बिताए पल, यही तो जिंदगी की खूबसूरत पूंजी बन जाते हैं, है ना। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ फिल्म इज्जत से, शब्द रचना साहिल लुधियानवी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, किसी की याद में गुजरता हुआ पल, किसी की आवाज सुनने की चाह और किसी की आंखों में अपने लिए प्यार तलाशना, यही छोटे छोटे एहसास जिंदगी को खास बना देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार में भी एक अलग मिठास छुपी होती है।

खयाम का संगीत बद किया हुआ कमाल अमरोही का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी शंकर हुसैन। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस टी बर्मन। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही हमें पूरा महसूस कराती है। किसी का साथ, किसी का विश्वास और किसी का प्यार, यही वो एहसास है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: अशो, तो मिड डे मेलोडी के सफ़र को अब यहीं विराम देते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक और सुरीले सफ़र पर। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। इजाज़त दीजिए रेनकोट नाला को। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना

महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को आपकी साथी गजाला खान का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और साथ ही साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम का आनंद ले रही होंगी। बहनों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, कल से काफी स्कूल खुल जाएंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्कूल खुलने से पहले पेरेंट्स की तैयारी। बहनों बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बच्चों के स्कूल खुलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल खुलते ही अगर हम पहले से सब कुछ तैयार नहीं रखेंगे तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहनों गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे अक्सर स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। उन्हें दोबारा स्कूल जाने के लिए तैयार करना पेरेंट्स के लिए काफी मशक्कत भरा काम है। इसके लिए हमें बच्चों और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया जाए। स्कूल खुलने से पहले पेरेंट्स को कुछ तैयारी जरूर करनी चाहिए। बहनों आज के समय में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को ढेर सारा होमवर्क मिलने लगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों ने होमवर्क अपना पूरा करा है या नहीं। अगर सारा होमवर्क पूरा नहीं किया तो हमें चाहिए कि उनका पहले होमवर्क पूरा कराएं। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने से पहले अपने बच्चों के स्कूल के बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, शूज जैसी जरूरी चीजें साफ करके सही जगह पर रख दें। अगर उनकी हेयर कटिंग वगैरह की जरूरत है तो वो भी जरूर करा लीजिए। स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट वर्क स्कूल खुलने से पहले ही पूरा कराइए, जिसमें बच्चों को स्कूल खुलने पर परेशानी का सामना न करना पड़े। छुट्टियों के बाद आप वक्त की पाबंदी का पूरा ध्यान रखें। बहनों हमें चाहिए कि स्कूल खुलने के थोड़े समय पहले ही बच्चों को स्टेशनरी शॉप ले जाकर उनकी जरूरत का सारा सामान दिला दें। नई चीजों के प्रति छोटे बच्चों के मन में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, इससे प्रेरित होकर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहनों गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को वापस उसी रूटीन पर लाने के लिए अपनी दिनचर्या और उनकी दिनचर्या जरूर बनाइए। बहनों स्कूल जाने से पहले बच्चों को खास तौर पर गुड टच बैड टच जरूर सिखाएं, क्योंकि बेटा हो या बेटी उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूल में या बस में उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कुछ भी हो तो उनसे कहिए कि वो फौरन घर पर बताएं या स्कूल में शिकायत करें। बहनों एक खास बात यह है कि बच्चों को फोन नंबर अपना, उनके पापा का जरूर याद कराएं।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: संदेशों के बाद आप सभी का दोबारा स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। तो बहनों, चलिए अब चलते हैं आधी आबादी की ओर और सुनते हैं आज की आधी आबादी।

0: बहनों कार्यक्रम में आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं सुरों की मलिका अलका याग्निक की। उनकी सुरीली आवाज को सुनकर पता नहीं कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई। जी हाँ, सुरीले गीतों को दिलों में उतारने वाली पार्श्व गायिका अलका याग्निक। बहनों अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। उनकी माँ शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। बचपन से ही घर का माहौल संगीत से भरा हुआ था। यही कारण था कि छोटी सी उम्र में उनकी सुरों से दोस्ती हो गई। सिर्फ 6 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। अलका जी अपनी माँ के साथ एक सपना लेकर मुंबई पहुँची। सपना था फिल्मों में गाने का, लेकिन उस समय फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। कई बार इंतजार करना पड़ा, कई बार निराशा मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
1: छोटी लड़कियाँ जब 1.5-2 साल की होती हैं, तब खिलौनों से खेलती हैं, गुड़ियाओं से खेलती हैं, पर मैं उस उम्र से ही हमेशा रेडियो के पास बैठी रहती थी और गाने सुना करती थी और सुन सुन कर मैं गाती थी गाने। और मेरी जो मम्मी हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मुझे गाने का बहुत शौक़ है और मुझे गुड़ियाओं से खेलने से बेहतर लगता है गाने सुनना और गाने गाना। तो मम्मी क्लासिकल सिंगर थी तो घर में रियाज करती थी, उनके गुरुजी आते थे तो मैं उनके पास बैठ के उनको सुना करती थी। और उस वक्त से ही मम्मी ने ये मेरी मम्मी ने ये देखा कि टैलेंट है इसमें, इसको म्यूजिक का शौक है, तो मुझे तब से ही सिखाना शुरू किया। तो 3-4 साल की उम्र से ही मैं सीखने लगी थी। 5 साल की उम्र से मैंने एक फॉर्मल तरह से गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों मैं कैलकटा में रहती थी, वहीं पर मेरी पैदाइश हुई। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकटा। तो वहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रेडियो, कैलकटा ऑल इंडिया रेडियो से मैंने एक अपना पहला गाना, भजन का प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक भजन गाया था। तो समझ लीजिए तब से ही एक शुरुआत सी हो गई थी। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता गया वो जर्नी, तो खैर बहुत लंबी जर्नी है और कैसे समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला।
0: बहन उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। यही विश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें कई छोटे बड़े अवसर मिले, लेकिन वह हर मौके को पूरी मेहनत से निभाती रही। फिर आया वह पल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 1988 में फिल्म तेजाब का गीत 1-2-3-4 रिलीज हुआ।

तो बस हर किसी की जुबान पर यही धुन थी। इस गीत ने अलका याग्निक को रातों रात देश की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बना दिया। बहनों, इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। संगीत की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने उदित नारायण, सोनू निगम जैसे बड़े गायकों के साथ अनगिनत सुपरहिट गीत गाए, जिन्हें आज भी लोग उतने ही प्यार से गुनगुनाते हैं।

0: अलका याग्निक ने सफलता मिलने के बाद भी कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहती हैं कि एक कलाकार को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए।
1: कभी कभी थकती भी थी आवाज, कभी कभी जैसे कि हमारा कभी कभी जुकाम हो जाता है या गला इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस हालत में भी रिकॉर्डिंग कई बार करनी पड़ती थी दवाएं खा खा के। तो तकलीफ तो होती थी, लेकिन उस वक्त इतना नशा था काम का, सर पे चढ़ा हुआ था काम, गाना गाना गाना। एंड आई स्टिल एंजॉय माय वर्क, आई स्टिल एंजॉय, आई ऑलवेज हैव एंजॉयड एनीथिंग जो म्यूजिक से संबंधित हो, मुझे उसमें किसी तरह भी इन्वॉल्व होना है।
0: बहनों, अलका याग्निक पिछले 2 सालों से सेंसरी न्यूरल नर्व्स हियरिंग लॉस से जूझ रही हैं। ये कान की अंदरूनी नस से जुड़ी बीमारी है जिसमें सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और लौटने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं।

23 जून 2026 अलका याग्निक के लिए एक यादगार दिन था। जब लोग तालियां बजा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी सुनने में असमर्थ थी। अलका याग्निक को महामहिम से पद्म विभूषण पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जाते देखना अत्यंत ही दुखदायी था। बहनों, अगर कभी कान से अचानक सुनाई देना बंद हो जाए, कान में टिन टिन की घंटी सुनाई दे, तो तुरंत ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए। सही टाइम पर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो सुनने की शक्ति लौटने के चांसेस होते हैं। अंत में उन्होंने कहा, आज मैंने सिर्फ एक पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, मुझे उन लाखों लोगों का प्यार महसूस हुआ जो मेरे सफर का हिस्सा रहे हैं। बहनों, अलका याग्निक का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर सपनों के साथ मेहनत धैर्य जुड़ जाए तो मंजिल जरूर मिलती है।

0: बहनों, आज का युग अपने में बहुत सी चुनौतियों भरा युग है। आज के डिजिटल युग में पेरेंट्स के लिए बहुत सी समस्याएं बढ़ रही हैं। बहनों, आज के डिजिटल युग में माता पिता के सामने बच्चों को सुरक्षित रखने और सही मार्गदर्शन करने की कई गंभीर चुनौतियां आ गई हैं। इसमें अत्यधिक स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन गेमिंग की लत और सोशल मीडिया का बढ़ता दबाव प्रमुख हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रही हैं। तो बहनों, चलिए सुनते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है डिजिटल युग में पेरेंट्स के सामने आने वाली समस्याएं। वार्ताकार हैं श्रीमती पारुल शर्मा।
1: 21वीं सदी को डिजिटल युग या सूचना क्रांति का युग कहा जाता है। यह वह दौर है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जिन कामों में घंटों या दिनों का समय लगता था, वे अब कुछ ही सेकंड में पूरे हो जाते हैं। शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। डिजिटल युग वह समय है जब अधिकांश कार्य डिजिटल तकनीकों की मदद से किए जाते हैं। आज हम ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन क्लास और सोशल मीडिया का रोजाना उपयोग करते हैं। यह सब डिजिटल युग की ही देन है। डिजिटल युग की सबसे बड़ी विशेषता तेज संचार और कनेक्टिविटी है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से सेकंड्स में बात कर सकते हैं। AI और ऑटोमेशन की वजह से कई काम मशीन खुद करने लगी है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तकनीक का यह बदलाव वरदान भी है और अभिशाप भी। एक तरफ ऑनलाइन क्लास, कोडिंग और पूरी दुनिया की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, तो दूसरी तरफ यही तकनीक पेरेंटिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां 2 साल का बच्चा बोलने से पहले यूट्यूब चलाना सीख जाता है। यूनेस्को की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 13 से 18 साल के 87% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है। औसत स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे रोज का है। यह आंकड़ा पेरेंट्स

ब्लैक बोर्ड, रेडियो और एसटीडी बूथ का जमाना देखा है। वहीं उनके बच्चे जूम पर पैदा हुए, चैट जीपीटी से होमवर्क करते हैं और इंस्टाग्राम पर अपना बचपन जी रहे हैं। WHO के अनुसार 2 से 5 साल के बच्चों को एक दिन में 1 घंटे और 15 से 17 साल के बच्चों को अधिकतम 2 घंटे स्क्रीन देखनी चाहिए, लेकिन भारतीय शहरों में बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे रोज और छुट्टी के दिन 10 घंटे भी पार कर जाता है। यह डिजिटल एडिक्शन है। यह एक ऐसा अदृश्य नशा है जो दिखता नहीं है। बच्चा जब फोन से दूर होता है तो उसके हाथ कांपते हैं, चिड़चिड़ापन व गुस्सा आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नशे के आदी को नशा न मिले। इस लत के चलते पेरेंट्स के सामने बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मोबाइल फोन और टीवी की अत्यधिक लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही है। इससे बच्चों के परिवार और समाज में भावनात्मक संबंध टूट रहे हैं। संवाद की प्राकृतिक प्रक्रिया समाप्त हो रही है, जिससे अवसाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बाल रोग विभागों में प्रतिदिन 35 से 40 बच्चे परामर्श के लिए आ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो दिन में 12 से 14 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से उनमें नींद की समस्या, एकाग्रता की और चिड़चिड़ापन दिख रहा है। गंभीर अवसाद के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को दर्शाती कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। कम हुई एकाग्रता अब फोन से, पुस्तकें से दूर बालक जा रहे, रोशनी कम आंखों की होने लगी, हेल्थ के परिणाम उल्टे आ रहे। बच्चे रात भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, नतीजा बच्चे दिन में सुस्त, चिड़चिड़े और स्कूल में एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। पेरेंट्स सुबह उठाते उठाते थक जाते हैं। ये सब नींद का चक्र बिगड़ने का परिणाम है। लगातार स्क्रीन से आंखें ड्राई, सिर दर्द, गर्दन दर्द आम हो गया है। इसके अतिरिक्त मोटापा, भूख न लगना, विटामिन डी की कमी भी लगभग सभी बच्चों में है। पहले बच्चे पार्क में खेलते थे, दोस्त बनाते थे, लेकिन आजकल छोटे बच्चे भी दोस्तों के साथ खेलने की बजाय वीडियो गेम और सोशल मीडिया में खोए हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। दोस्तों से भी हैं अब तो फासले, खेलने बाहर भी अब जाते नहीं, रील्स ने भटकाव इतना दे दिया, रात को भी चैन से सोते नहीं। डिजिटल युग भी अनदेखे खतरों का खुला जालसा है। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा घर में सेफ है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा घर है जिसकी दीवारें नहीं हैं। एक क्लिक और बच्चा दुनिया के सबसे खराब कोने में पहुंच सकता है। इंटरनेट एक खुला समुद्र है, यहाँ अच्छी चीजें भी हैं और बुरी भी। बच्चे अनजाने में अडल्ट कंटेंट, हिंसक गेम या गलत वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं। साइबर बुलिंग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बच्चे ऑनलाइन मजाक उड़ाए जाने से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रीडेटर्स और फाइनेंशियल स्कैम का खतरा हर समय बना रहता है। माता पिता को पता ही नहीं चलता बच्चा किससे बातें कर रहा है। माता पिता के इस डर को लेकर कुछ पंक्तियां यहाँ बिल्कुल सटीक हैं। डरते हैं माता पिता ये सोचकर, इस मोबाइल युग में बच्चे खो रहे, गलत संगत का बड़ा खतरा यहाँ, ऑनलाइन ब्लैकमेल हो रहे। जनरेशन गैप के चलते माता पिता व बच्चों की टेक्नोलॉजी के प्रति समझ अलग अलग है। पेरेंट्स और बच्चे अलग अलग ग्रह के प्राणी लगते हैं। आपको कुछ नहीं पता पापा, यह वाक्य आम हो गया है। आज का बच्चा 3 साल की उम्र में स्वाइप करना सीख जाता है, 10 साल में यूट्यूब चैनल बना लेता है। वहीं 40 साल के माता पिता अभी भी फोन पे से पेमेंट करते हुए डरते हैं। आजकल बच्चे सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, जिससे माता पिता पता ही नहीं कर पाते कि बच्चा कंप्यूटर या फोन पर क्या क्या देख रहा है। टेक्निकल ज्ञान में कमी होने के कारण माता पिता असहाय महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि माता पिता स्वयं भी उदाहरण नहीं बन पाते। बच्चे कान से नहीं आँख से देखकर अधिक सीखते हैं। पेरेंट्स बच्चों को तो डांटते हैं कि खाना खाते वक्त फोन नहीं देखते, किंतु स्वयं खाना खाते वक्त टीवी या रील देखते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो माँ उसे फोन पकड़ा देती है, ले बेटा गेम खेल ले। बच्चा चुप हो जाता है, फिर वही बच्चा बिना फोन के खाना नहीं खाता। यहाँ कुछ पंक्तियाँ पेरेंट्स को प्रेरित करने के लिए कही गई हैं। बच्चों को प्रेरित करें, खुद में करें बदलाव, वक्त उन्हें भी दीजिए भले ही समय अभाव। पहले का बच्चा साइंस प्रोजेक्ट, एसे या मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपना दिमाग लगाता था, 10 तरह की किताबें पढ़ता था। माता पिता, बड़े भाई बहन, दोस्त या अध्यापकों से मदद लेता था। उसके ज्ञान में वृद्धि होती थी और उसके तर्क करने की क्षमता का विकास होता था। किंतु आज चैट जीपीटी और चीटिंग का दौर है। AI 2 मिनट में सब

0: बता देता है। माता पिता खुश होते हैं कि बच्चा बहुत स्मार्ट है, किंतु असल में बच्चा कॉपी पेस्ट मास्टर बन रहा है। वह स्वयं से दो लाइनें भी नहीं लिख पाता। यहाँ बच्चों को सीख देती कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं: कॉपी पेस्ट के आदि ना हो अब ये बच्चे बाल, स्वयं जगाएं चेतना, सोचें करें सवाल। डिजिटल युग में पढ़ाई में एक नहीं कई डिस्ट्रैक्शन हैं। कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लास नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसी लैपटॉप में यूट्यूब और गेम्स भी हैं। 10 मिनट की पढ़ाई, 50 मिनट गेम, यह नया पैटर्न बन गया है। सभी बच्चे आपस में भी आजकल पढ़ाई या खेल की बातें नहीं करते। मोबाइल, टीवी पर कौन सा नया गेम है, क्या गाना ट्रेंड में है, कैसी रील है, इन सभी पर चर्चा करते हैं, जिससे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर बच्चा मोबाइल की दुनिया में रहने लगता है। आधुनिक बच्चों के लिए ये पंक्तियां सटीक हैं: मोबाइल टीवी में बच्चे लगे रहें दिन रात, खेल पढ़ाई छोड़कर करें गेम की बात। आजकल सोशल मीडिया तुलना का अंतहीन जाल बन गया है। इस पर परफेक्ट लाइफ का झूठा दिखावा किया जाता है, जिससे बच्चे मानसिक दबाव महसूस करते हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ने एक नई दुनिया बना दी है, जहां हर कोई खुश, अमीर और सुंदर है। 15 सेकंड की रील में दोस्त मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं, किसी ने आईफोन लिया है। सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चों में डिप्रेशन का खतरा 2.5 गुना बढ़ जाता है। लाइक और फॉलोअर्स कम आने पर बच्चे खुद को बेकार समझने लगते हैं। माता पिता उनकी उस दुनिया को समझ नहीं पाते और कोई मदद नहीं कर पाते, अंत में खुद को असहाय समझते हैं। माता पिता के दर्द को दर्शाती कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं: स्क्रीन टाइम कैसे कम हो, सोच रहे माँ बाप, बड़ी चुनौती सामने, बढ़ा रही संताप। बच्चे बिना सोचे अपनी फोटो, स्कूल का नाम, लोकेशन स्टोरी पर डाल देते हैं। उन्हें नहीं पता है इंटरनेट पर डाला हुआ कुछ भी कभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं होता। हैकर्स यही डेटा इकट्ठा करके बच्चे के आधार, बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। डिजिटल किडनैपिंग नया क्राइम समाज में आ गया है। इसका उपयोग क्रिमिनल अकाउंट खाली करने, फोटो का गलत इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करने में करते हैं। डिजिटल युग को रोकना मुमकिन नहीं है, रोकना भी नहीं चाहिए। आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सभी पेशों में टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, उसका इस्तेमाल है। माता पिता को डिजिटल पुलिस की जगह डिजिटल कोच बनना होगा। अगर हम बच्चों को तैरना सिखाए बिना पानी में फेंक देंगे तो वे डूबेंगे ही, लेकिन अगर तैरना सिखा दें तो वही समुद्र उनके लिए अवसरों का महासागर बन जाएगा।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था डिजिटल युग में पेरेंट्स के सामने आने वाली समस्याएं। वार्ताकार थी पारुल शर्मा। बहनों, हमें चाहिए अपने बच्चों के गुणों की अच्छे से प्रशंसा करें। आप उनकी खूबियों को सहजता से स्वीकार करें। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि बाहरी सुंदरता अस्थाई है, हमारे आंतरिक गुणों से ही व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। बहनों, हमें चाहिए कि कभी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से कभी ना करें। उनके सामने भले ही उनके गुणों की प्रशंसा करें, लेकिन दूसरे बच्चे से अपने बच्चे के रूप रंग की तुलना कभी ना करें। बहनों, हमें अपने बच्चों की प्रशंसा से आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह प्रशंसा करके हम अगर बच्चों के किसी भी तरह की हीन भावना आ रही है तो उससे उनकी प्रशंसा करके उसे भी दूर कर सकते हैं। बहनों, अब धीरे धीरे कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो आपको कार्यक्रम के विषय में क्या विचार हैं आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए: कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। बहनों, कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए: 9457078288। एक बार दोबारा से आप हमारा फोन नंबर सुन लीजिए: 9457078288। तो बहनों, आपके पत्रों का और आपके प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी बहन गजाला खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लोक धारा लोक संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुमारी मीना के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे कुमारी मीना के गाए जौनसारी लोकगीतों का। इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines: Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Central Maharashtra, Konkan and Goa for next 2 days. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in 4-3 penalty shootout. Morocco enters round of 16, defeating the Netherlands. The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money near instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Mr. Goyal said the increasing global acceptance and appreciation of UPI reflects the trust in Prime Minister Narendra Modi's vision of building technology-led solutions that create value beyond borders and deepen partnerships for shared growth and prosperity. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers, BLOs, will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media yesterday, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, said claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. In Karnataka, door-to-door enumeration of voters has begun with the visit of booth block-level officers to the households as part of the special intensive revision. Over 59,000 BLOs are deployed across the state for the exercise in all the 31 district election offices. In Meghalaya, East Khasi Hills Deputy Commissioner Abhilash Baranwal informed that BLOs will visit households across all 1,021 polling stations in the district until July the 29th and distribute pre-filled self-enumeration forms to voters whose names are already included in the 2025 electoral roll. Special intensive revision of electoral rolls has begun in Jharkhand from today. We have a report.
2: Under the campaign, booth-level officers, BLOs, will visit every household till 29 July to distribute partially pre-filled enumeration forms and carry out voter verification. Chief Electoral Officer K. Ravi Kumar said that the objective of the exercise is to make the electoral rolls completely accurate, transparent and error-free, ensuring that no eligible Indian citizen is left out and no ineligible person is included. He appealed to voters to fill in the required details, sign the forms and return them to their BLOs at the earliest so that their names can be included in the draft electoral roll to be published on August 5th. For Akashwani News, this is Mehvish Rahman from Ranchi.
1: President Draupadi Murmu has reached Andhra Pradesh for a two-day visit. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. A report.
3: The President will grace the maiden convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam today. Degrees will be awarded to 373 students who completed their undergraduate and postgraduate programs between the 2020 and 2025 academic years. She will also present gold medals to 13 meritorious students, including 10 women, for their outstanding academic performance. Established in 2019 with its headquarters at Vijayanagaram, the Central Tribal University of Andhra Pradesh commenced academic activities in 2020. The convocation marks a significant milestone in the university's academic journey. Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, and several other dignitaries are expected to attend the ceremony. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
1: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today emphasized that the vision of Viksit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana, Mr. Chauhan said the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer the soil requires. He urged the farmers to use fertilizers and insecticides in their farms in a balanced manner in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming.
4: It is essential to use balanced fertilizers and apply pesticides only when necessary, providing the soil with only the nutrients it needs. Excessive pesticide use has degraded soil health, disrupted the natural balance of the ecosystem, and can negatively affect human health also. Protecting the environment ensures a healthier planet and a healthy and a safe future for all of us.
1: Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual, but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over four decades has been his greatest privilege. General Dwivedi said the Indian Army has progressively maintained its preparedness, balance and vigilance on every front over the past 2 years.
5: Our steadfast soldiers remain deployed across mountains, deserts, glaciers, forests and challenging border regions, safeguarding the nation under all circumstances. They have played a vital role in counter-terrorism operations and have demonstrated exceptional courage and resilience in diverse operational environments. From dense forests to United Nations missions, their unwavering dedication, discipline and professionalism exemplifies the highest standards of service. Operation Sindoor stands as a testament to their valor, operational excellence and steadfast commitment to the nation.
6: Operation Sindoor is ka jwalant udaharan.
1: The government has extended the due date for filing of appeals before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, GSTAT, till the 31st of next month. According to the Ministry of Finance, an earlier notification dated September last year had notified today as the last date for filing of appeals before GSTAT. It is noted that the due date has been extended in view of the recent representations from various stakeholders highlighting technical difficulties due to the rush to file appeals on the GSTAT portal. The government has also advised taxpayers to plan their appeal filings well in advance and not wait until the deadline. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terror financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the FATF following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of Counter-Terrorism Week, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. He said countries receiving adverse FATF assessments should address identified deficiencies and strengthen action against terror financing. Mr. Harish also outlined India's efforts to strengthen its anti-money laundering framework, including tighter regulations for virtual asset service providers and cooperation with FATF on emerging financial risks. India has intensified its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. The Ministry of External Affairs said India has extended relief efforts with a focus on medical assistance and emergency support for those affected by the disaster. The ministry said Indian rescue and medical teams working alongside the Venezuelan authorities are providing emergency health care, conducting search and rescue operations, and delivering life-saving humanitarian assistance to affected communities. It also noted that the Indian Army Field Hospital is operational and is providing medical care to those injured in the disaster. Earlier yesterday, India had deployed two Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft carrying a 41-member rescue team, an Indian Army Field Hospital, 30 tons of relief material, 6 tons of medicines and medical equipment. Diplomatic efforts to reduce tensions in West Asia have encountered an early hurdle as the United States and Iran offer conflicting accounts of the next stage of discussions in Doha. Uncertainty has grown over the future of U.S.-Iran engagement after President Donald Trump indicated that fresh talks could be held in Doha. However, Tehran has firmly rejected the claim, saying no negotiations with the United States are currently planned. Iranian officials maintain that their immediate focus is on implementing the 14-point Memorandum of Understanding before considering discussions on a broader or final agreement. A report.
7: In a fresh diplomatic twist, United States President Donald Trump says an Iranian delegation requested high-level face-to-face talks in Qatar to move forward with the recently announced interim Memorandum of Understanding aimed at easing tensions in West Asia. But Tehran has denied that claim. Iranian officials say the delegation is traveling to Doha only for technical discussions on implementing existing agreement and no direct negotiations with United States officials are planned. Iranian President Masoud Pezeshkian had also made it clear that Tehran will honor its commitments only if Washington fulfills its own obligations, including easing sanctions and releasing Iranian assets. The contrasting statements underline how fragile the diplomatic process remains despite recent efforts to reduce regional tensions. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Three more teams have bowed out of the 2026 FIFA World Cup after the opening round of 32 matches. Morocco, Brazil and Paraguay booked their places in the round of 16 with victories over the Netherlands, Japan and Germany respectively. We have a report.
8: Germany suffered a shock exit after losing to Paraguay 4-3 in a penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in the World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. In another match, Morocco defeated the Netherlands 3-2 on the penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in round of 32 clash today. Morocco's Ashraf Hakimi and Neil El Anoui tested Dutch goalkeeper Bart Verbruggen, while Mickey van der Ven forced a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gakpo scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crescencio Somerville. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Ashraf Hakimi, Ismail Saibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
1: The Intermeteorological Department, IMD, issued an orange-coloured warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, Sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
10: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
9: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके. कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है. कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं. इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं. 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं. झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे. एक रिपोर्ट.
11: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो. श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
12: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
13: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
12: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
14: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
12: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
15: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
12: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
16: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
12: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
17: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
12: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलट फेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। श्रोताओं आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेणु कोटनाला। स्वागत है आप सभी का एक ही कलाकार कार्यक्रम में। श्रोताओं आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे रचनाकार की जिसने अपने कैमरे और कलम से हिंदी सिनेमा में छोटे शहरों की मिट्टी, इंसानी रिश्तों और संघर्षों की सच्ची तस्वीर पेश की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संवाद लेखक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। आज का सफर तिग्मांशु धूलिया के नाम। श्रोताओं 3 जुलाई 1967 को इलाहाबाद में जन्मे तिग्मांशु धूलिया का बचपन साहित्य, रंगमंच और कला के माहौल में बीता। थिएटर से जुड़ाव ने उनके भीतर अभिनय और कहानी कहने की कला को मजबूत किया और आगे चलकर उन्होंने नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लिया और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दौर में श्रोताओं उन्होंने फिल्म लेखन और कास्टिंग से जुड़े काम किए। दिल से जैसी फिल्मों में उनके लेखन योगदान ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। तो लीजिए सुनिए आप भी फिल्म दिल से का गीत आवाज सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है एक ही कलाकार। श्रोताओं, तिग्मांशु धूलिया ने वर्ष 2003 में फिल्म हासिल से निर्देशन की शुरुआत की। ये फिल्म युवाओं की राजनीति और छोटे शहरों की वास्तविकताओं को दर्शाने वाली फिल्म थी और इसे काफी सराहना भी मिली। उनकी फिल्मों की खासियत श्रोताओं ये रही है कि उन्होंने चमक दमक से दूर जमीन से जुड़े किरदारों और कहानियों को पर्दे पर उतारा। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हासिल का गीत आवाज अभिजीत की।

श्रोताओं, साल 2011 में आई फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर ने तिग्मांशु धूलिया को एक अलग पहचान दिलाई। सत्ता, रिश्तों और विश्वासघात की कहानी को उन्होंने बेहद प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत किया। और इसके बाद आई पान सिंह तोमर, जो एक एथलीट और सैनिक के जीवन पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की और तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन को नई ऊंचाई भी दी। आपको अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं फिल्म साहेब बीबी और गैंगस्टर का गीत। स्वर है नूरजहां और अमित गुप्ता का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, निर्देशन के साथ साथ इग्मांशु धुलिया ने अभिनय में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। गैंग ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह के किरदार ने उन्हें दर्शकों के बीच एक यादगार पहचान दी। उनकी अभिनय शैली में सहजता और संवाद अदायगी की एक अलग ही चमक दिखाई देती है। आइए आपको भी सुनवाते हैं गैंग ऑफ वासेपुर का गीत। स्वर है खुशबू राज और रेखा झा का।

श्रोताओं, तिग्मांशु धूलिया ने बुलट राजा, राग देश और कई दूसरी फिल्मों के जरिए अलग अलग विषयों को छुआ। उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि कहानी में समाज, इतिहास और इंसानी भावनाओं की झलक दिखाई दे। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म राग देश का गीत, स्वर श्रेया, सुनिधि के और राणा मजुमदार का है।

श्रोताओं, आज भी तिग्मांशु धूलिया फिल्म और अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। उनकी पहचान ऐसे फिल्मकार की है जो अपनी कहानियों में जीवन की सच्चाई, संघर्ष और समाज के अनदेखे पहलुओं को जगह देते हैं। श्रोताओं, तिग्मांशु धूलिया को पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस फिल्म के लेखन के लिए तिग्मांशु धूलिया और संजय चौहान को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी कई अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले हैं और दूसरे फिल्मों के लिए वो नॉमिनेट भी किए गए हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं पान सिंह तोमर का गीत, आवाज़ रवलीन और विधि शर्मा की।

तो श्रोताओं, ये था सफर। निर्देशक, लेखक और अभिनेता दिग्मांशु धूलिया के नाम। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे सिनेमा के एक और सुनहरे सफर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, रेणु कोटनाला को नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की सभा भी यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

पहले जानकारी श्रोताओं हमारे आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। तो श्रोता, हम आपको बता दें कि आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी देहरादून की। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा रात 10:30 पर और 9:30 पर आर्काइव्स कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे नाटक बंदी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर आप सुनेंगे श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। समय याद रखिएगा शाम 6:45 पर। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम में आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर। युवावाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15 पर, माफ कीजिएगा शाम 5:05 पर। और इस

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। और आइए अब नजर डालते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। फिल्म संगीत गीत संध्या होगा रोजाना की तरह शाम 8 बजे और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से कानून की बात। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे शाम 7:32 पर। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुलवंत सिंह के गाए शब्द। छाया गीत होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव विषय पर डॉक्टर विकास कंडवाल की ये पूर्व प्रसारित वार्ता। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एपिडा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। युववाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा यूथ कनेक्ट कहानी के उस पार संदेश.com। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरीश सिंह मेहरा के गायक कुमावनी लोक की पात थारे मन की। ये क्रम होगा घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत कल दोपहर 1:15 पर। मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। 12:05 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाय राग शुद्ध सारंग धरती गाती है। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे रजनी टोंक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सूरज के साथ साथ। ये कार्यक्रम होगा रोजाने की तरह सवेरे 7:31 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग
1: लिसनर्स,
0: स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: मैं हूं आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ हैं गौरी चिट्टी साथी।
0: दोस्तों, ढलते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ और नंदिनी के साथ मौजूद हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट मदीहा रहमान।
1: तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। अब देखिए, बुरा हम किसी का नहीं सोचते, और साथ साथ आप हमारे लिसनर हैं तो आपका तो अच्छा ही सोचेंगे।
0: हाँ भाई, अच्छे ही होंगे, और हमारा आज का प्रोग्राम सुनकर तो और भी अच्छे हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही मदिहा, क्योंकि हमारा आज का प्रोग्राम है बहुत कलरफुल, इतना खास कि हर टाइप की वैरायटी है हमारे प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल सही दोस्तों, आज की शाम आप सुनेंगे सुर सर्कल 3.0, कहानी के उस पार और एक रोमांचक सा रहस्य सीरीज। तो आज का आपका दिन होने वाला है काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और रोमांचक।
1: तो बने रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक, लेकिन उससे पहले बिगनिंग वाला काम कर लेते हैं, यानी कि पूछ लेते हैं आपसे बूझो तो जाने का सवाल।
0: तो हमारा आज का सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है?
1: आप सही जवाब दीजिए हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर।
0: तब तक के लिए आपको सुनवाते हैं ये आज की शाम का पहला गीत,
1: और गुम कर देते हैं आपको। और क्या गुम करेंगे, कैसे गुम करेंगे, बताएंगे हम ब्रेक के बाद।

हो रहा था कि कोई अदृश्य साया उन पर नजर रख रहा है। रातों को हवेली से आने वाली डरावनी आवाजें, सिसकियां और अचानक दिखने वाले काले सायों ने राजा साहब के साथ साथ पूरे हवेली को एक खौफ में डाल दिया था। इसी दहशत के बीच 12 अगस्त की रात मेन पार्टी के दौरान अचानक पूरी हवेली की बिजली गुल हो जाती है। जब रोशनी लौटती है तो जश्न मातम में तब्दील हो जाता है। कुंवर राजवर्धन और पार्टी में आए 4 VIPs वहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। पुलिस की भारी नाकाबंदी के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिलना और इस घटना के बाद हवेली में 400 साल पुराने एक शाव की अफवाहें जोर पकड़ लेती हैं। बुजुर्गों का मानना था कि जिस राजकुमारी ने सालों पहले हवेली के एक बंद कमरे में खुदकुशी की थी, उसी की भटकती आत्मा ने अपना बदला लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब उलझ जाती है तो पुलिस सिंदूर और कौड़ियों से बधे उस पुराने शापित कमरे के भारी ताले तोड़ देते हैं। अंदर उन्हें कोई भटकती आत्मा तो नहीं मिलती, लेकिन एक पुरानी संदूक मिलती है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम उस संदूक को खोलती है तब उनको हवेली का पुराना नक्शा मिलता है। इस नक्शे से खुलासा होता है कि हवेली के ठीक नीचे एक विशाल और बुलबुलैया नुमा तहखाना है, यानी गायब हुए लोग बाहर गए ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे ही दफन थे। जब पुलिस की हथियारबंद टीम उस तहखाने में उतरती है तब उन्हें जमीन पर ताजे खून के निशान मिलते हैं और तभी अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज गूंजती है, जिसका मतलब था कि मौत का खेल अब शुरू हो चुका था। तहखाने की उस अंधेरी और डरावनी बुलबुलैया को पार करते हुए पुलिस आखिरकार सबसे गहरे और आखिरी कमरे तक पहुंची गई। सामने का नजारा देखकर पुलिस वालों की सांसें अटक गई। कमरे के बीचों बीच वो चारों VIP मेहमान और कुंवर राजवर्धन रस्सियों से बंधे हुए पड़े थे। उन सबके चेहरों पर खौफ था और बेबसी थी। पुलिस ने अपनी बंदूकें अंधेरे में खड़े उस शख्स पर तान दी जिसने पूरा खूनी जाल बुना था। जब रोशनी उस शख्स के चेहरे पर पड़ी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई बाहरी कातिल या 400 साल पुरानी भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि वो खुद हवेली के मालिक और राजवर्धन के सगे पिता राजा गोवर्धन सिंह थे। सच इतना घिनौना था कि किसी ने सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की थी। यह कोई पुरानी दुश्मनी या शाप का मामला नहीं था, बल्कि एक अंधे लालच की खौफनाक कहानी थी। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए कहानी में चलते हैं। अब से तकरीबन 50 साल पहले गोवर्धन सिंह के पिता यानी राजवर्धन के दादा अपने बेटे गोवर्धन की जुए, शराब और क्रूरता जैसी बुरी आदतों से वाकिफ थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका बेटा ठीक नहीं है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिख दिया था कि गोवर्धन को हवेली की फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी और सारी जायदाद और रियासत का इकलौता वारिस उनका पोता राजवर्धन होगा और यह सारी बेतहाशा दौलत उसे उसके 21वें जन्मदिन पर मिल जाएगी। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा राजवर्धन बस कुछ दिनों में ही 21 साल का होने वाला था। अपनी ही जायदाद को अपने हाथ से जाते देख गोवर्धन सिंह दौलत के लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपने ही खून अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। खुद को शक से बचाने के लिए उसने हवेली में भूत प्रेत और शापित कमरों का झूठा नाटक रचा। वो रात को डरने का सिर्फ एक बेहतरीन ड्रामा कर रहा था ताकि पुलिस का शक भटकती आत्माओं पर जाए। पार्टी की रात बिजली कटते ही उसने राजवर्धन को बेहोश करके तहखाने की तरफ घसीट लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन चारों VIPs मेहमानों ने गोवर्धन सिंह को अपने ही बेटे को अगवा करते हुए रंगे हाथों देख लिया था। अपना राज खुलते देख गोवर्धन सिंह ने हथियारों के दम पर उन चारों को भी बंधक बना लिया और तहखाने में कैद कर दिया ताकि वो सबको एक साथ मौत के घाट उतार सके। अंत में पुलिस ने उस लालची और बेरहम पिता को गिरफ्तार कर लिया। पोखरान हवेली में कभी कोई भूत था ही नहीं, असली शैतान तो एक बाप के दिमाग में बैठा था जो सिर्फ दौलत के लिए अपने ही बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा था। उस रात ये साबित हो गया था कि दुनिया में किसी भी शाप से ज्यादा खौफनाक एक इंसान का लालच होता है और वही असली शैतान होता है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे आगे रहस्य सीरीज की किसी अगली कहानी में। और हाँ, हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूले।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: अबे सांप काट लिया मेरे पैर पे। क्या तरीका है ये भाई? तुम भी तो शहर में आते हो ना, अब हमें जंगल से जाने ही नहीं दोगे?
6: क्यों, मजा आया? तुम भी तो भगाते हो हमें डंडों से, तो अब मैंने काट लिया, ले एक और बार काट तुम, ले।
5: हाँ हाँ काट, ले काट, ये रहा मेरा पैर, काट काट काट ना।
6: क्यों, थक गया ना? अब यार मैंने इसके 4 बार काट लिया, तू इंसान है या फिर भूत है?
5: देख मैं हूं तो इंसान, पर मेरा पैर नकली है, ले काट ना।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो गाइस, हो गया है मंथ एंड, और आपको पता है मंथ एंड में हमारे यहाँ होता है एक स्पेशल सुरों का प्रोग्राम, सुर सर्कल। तो आज हम करने वाले हैं सुर सर्कल 3.0, पर जरा हटकर, थोड़ा सिचुएशनल। अब क्या कैसे, थोड़ा आराम से आपको बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको हमारे पार्टिसिपेंट से। तो हमारी पार्टिसिपेंट रहेंगी उमंग चौहान, दिव्यांशु, खुशी गुप्ता, वंशिका, मोहित। इंट्रोडक्शन तो आपका करा दिया, अब चलते हैं सिचुएशंस लेकर हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। हेलो उमंग।
8: हेलो।
7: आप रेडी हैं आपकी सिचुएशन के साथ?
8: हाँ जी।
7: ओके, तो देखते हैं। तो आपकी सिचुएशन एक बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली नजर का प्यार आपकी सिचुएशन है। आप बताइए आपको क्या सॉन्ग याद आता है?
8: पहली नजर का प्यार
7: हुआ है मेरे दिल में।
8: सबको ही होता है।
7: अच्छा ठीक है, तो फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस समझ।
8: हाँ जी, तो इस सिचुएशन में मुझे एक ही गाना याद आता है,

0: इतने प्यार से बुलाओगे तो आ ही जाएंगे. ओके, तो अब हम ये सिचुएशन लेकर चलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट दिव्यांशु की तरफ. तो दिव्यांशु, आप रेडी हैं?
1: जी बिल्कुल.
0: अच्छा, तो आपकी सिचुएशन भी कुछ रेडी वाली है. तो आपकी सिचुएशन है कि आप सोने जा ही रहे थे, लेकिन बेड पे लेटते ही उसकी मुस्कान याद आ गई. आती होगी आपको याद तो उसी सिचुएशन के हिसाब से.
1: जी, मेरे मन में इस सिचुएशन के लिए एक गाना है जो बॉडीगार्ड मूवी से है.
0: जी जी

0: खाना याद आता है, सुबह उठ के गा भी दिया कीजिए, वो आ जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखूंगा मैं।
0: चलिए तो अब हम ध्यान रखते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट का और बुलाते हैं हमारी पार्टिसिपेंट खुशी को। तो गाइस हमारे पास इतने सारे प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हमारे पहले पार्टिसिपेंट्स ने और अब हमारे पास है भी खुशी, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं, यानी कि अब इनसे हम कुछ सैड सा सॉन्ग गवाते हैं। ओके तो खुशी रेडी है आपकी सिचुएशन के लिए आप?
2: यस डेफिनेटली।
0: ओके तो आपकी सिचुएशन है दिल लगाया पर लगाने, बहुत बुरे ब्रेकअप के बाद वाला वो एहसास, कौन सा सॉन्ग डिफाइन करता है उसे?
2: इस सिचुएशन पे हम देखते हैं कि हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं, बहुत पेन फील करते हैं। तो
0: आपका हुआ है ब्रेकअप?
2: नहीं कुछ नहीं हुआ, बट मैं जैसे सॉन्ग गाती हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ वो चीज़। तो इसके लिए मुझे एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग माइंड में आ रहा है जो लता मंगेशकर जी का है,

0: तो आप परेशान मत होइए और बैठ जाइए अपनी सीट पर जाकर। आपको इस दुख से हम बाहर निकालने के लिए बुलाते हैं हमारी अगली पार्टिसिपेंट उमंग को। खुशी ने दुख बयां किया अपने सॉन्ग के जरिए, अब हम उमंग की उमंगे निकालते हैं इस सिचुएशन के साथ। तो उमंग, आपकी सिचुएशन है दैट यू आर डांसिंग इन रेन। पहले तो ये बताओ, आप अकेले डांस कर रहे हो या किसी के साथ?
1: किसी के साथ तो नहीं, हाँ बचपन में अकेले बहुत डांस कर रहे थे।
0: आपके सॉन्ग के सिचुएशन के हिसाब से?
1: नहीं, किसी के साथ।
0: किसी के साथ, ओके ठीक है, चल
1: ठीक है।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत डांस में कोरियोग्राफी भी साथ साथ चल रही है. ओके, थैंक यू सो मच. अब हम बुलाते हैं हमारे पार्टिसिपेंट मोहित को. तो मोहित, आपकी सिचुएशन है कि आपका दिल तोड़ गई, उस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सॉन्ग आपको क्लिक करना?
1: ओहो, ये क्या याद दिला दिया आपने. चलिए, एक गाना है

तो जहां वादा गया वहां उसको जाने दीजिए, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। अब हम बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट वंशिका को। तो वंशिका, आपकी सिचुएशन है कुछ रोमांटिक, क्योंकि बैलेंस बना के चलना है ना। अभी मोहित ने इतना वादों को याद दिलाया, तो अब आपकी बारी कि आपकी स्पेशल वन ने आपके लिए एक अच्छा सा डिनर डेट तैयार किया, तो उस सिचुएशन पर क्या सॉन्ग आएगा?

0: ओके, तो वंशिका आप ये बताइए, आपके लिए किसी ने डिनर बनाया है या डेट तैयार की है?
1: डेट तो नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं तो कभी कभी कुछ बना देते हैं अगर मन होता है उनका तो।
0: तो खुश हो जाएंगे वो सुनकर आपकी बात।
1: बिल्कुल होने तो चाहिए।
0: चलिए ठीक है, हम बुलाते हैं हमारी अगली पार्टिसिपेंट खुशी को।
1: खुशी, पहले हमने आपको बहुत दुखी किया था एक सिचुएशन के साथ, तो आपके नाम के हिसाब से चलते हैं ना।
2: Okay,
1: अभी वंशिका ने भी थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ है, तो आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि फाइनली बड़े स्ट्रगल के बाद अपनी स्पेशल वन से शादी हो गई। अ सॉन्ग फॉर दैट स्पेशल वन।
2: ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है, और इफ अगर कोई इस मोमेंट को जी रहा है तो वो यही चाहेगा कि वो मोमेंट वहीं रुक जाए, वो उस इंसान के साथ हमेशा रहे।
0: तो फिर हम तो ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में मोमेंट जल्दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो इसके लिए मेरे माइंड में एक ही गाना आता है, ये भी एक पुराना ही सॉन्ग है लता जी का,

0: क्या बात है खुशी, जो सुन रहे होंगे हो सकता है वही आ जाए आपके लिए गाने आपका मोमेंट पूरा करने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दिव्यांशु की तरफ। तो दिव्यांशु, आपकी सिचुएशन है कि कॉलेज का आखिरी दिन और दोस्तों से वो आखिरी मुलाकात, क्या सॉन्ग उस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा?
1: देखिए, जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था तो हमने काफ़ी सारी प्लानिंग की थी कि हम ये करेंगे, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं कर पाते। तो मेरे मन में अभी एक सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग आ रहा है कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं ये गाता और ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ।
0: बहुत पर्सनल हो गया फिर ये सिचुएशन।
1: झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल।

0: कर ले, गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक बेटा।
1: तो बेटा कौन सी गलती की है आपने ये बताइए।
0: नहीं, सारी चीजें बताई नहीं जाती।
1: ओके तो अब कुछ डिफरेंट करते हैं। हमने सिचुएशन सबको अलग अलग दी, सबने अलग अलग सॉन्ग्स गाए। अब हम एक सिचुएशन देते हैं, दैट इज रेट्रो वाइब। सबका एक होता है ना फेवरेट कि ये पुराना गाना मेरा फेवरेट है, ये पुराना गाना मेरा फेवरेट है। आपका वो पर्सनल फेवरेट रेट्रो वाइब, आप सबसे पहले हम बुलाते हैं उमंग को। तो उमंग, क्या है आपकी उमंग?
2: मुझे अगर हम रेट्रो वाइब की बात करें तो मुझे एक पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है, आपने वो सुना होगा, बाहों में चले तो उसी से रिलेटेड, मतलब उसी गाने का एक मैं अंतरा गाना चाहूंगी। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, एकम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। हाँ कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे,

0: तो उमंग ही एक्सपेक्टेशन है या रियलिटी है?
1: एक्सपेक्टेशन ही है अभी तक तो.
0: चलिए पूरी हो जाएगी. अब हम बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट दिव्यांशु को. तो दिव्यांशु, आपकी रेट्रो वाइब क्या है?
2: मैं अगर रेट्रो वाइब
0: नए बंदे हैं पुराने बंदे में.
2: मैं बंदा नया हूँ, लेकिन मुझे जो पुराने गानों के पीछे एक सोच होती है वो बहुत रेजोनेट करती है.
0: ओके.
2: तो मैं बहुत सारे पुराने गाने गाता भी हूँ, तो अभी रेट्रो वाइब का गाना चूज करने का मौका मिला है तो मैं गाना चाहूंगा ओ मेरे दिल के चैन

0: ठीक है जी, आपके दिल को चैन आए, दुआ करेंगे हम। अब बारी है खुशी की, अब देखते हैं कितनों के दिलों को चैन लाते।
1: अगर हम रेट्रो वाइब की बात करते हैं तो मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो मैं सुनती हूँ, लगातार सुनती हूँ। गाने का नाम है गुम है किसी के प्यार में।

0: अरे राम, लिख तो ना। चलिए ठीक है, हम बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट मोहित को। तो आपकी रेट्रो वाइब कौन सा सॉन्ग?
1: ठीक है, मुझे एक गाना याद आ रहा है, उसमें तो शायद हस्बैंड वाइफ होते हैं या हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो गाना भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है।
0: बालिका वधू।
1: जी, बालिका वधू मूवी का। हाँ, उसमें आई गेस सचिन

0: धन्यवाद, आपका गाना भी बहुत अच्छा लगा और हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा इस म्यूजिकल शाम में शामिल होकर।
1: जी धन्यवाद।
0: तो दोस्तों आपसे मिलेंगे सुर सर्कल 4.0 में अगले महीने और हमारे प्यारे प्यारे साथियों के साथ, उनके प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तब तक प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे।
2: दोस्तों अब बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे
0: और फाइनली मदीहा ने भी अपना मौन तोड़ा। इतनी खामोशी से वो इस म्यूजिकल इवनिंग को एंजॉय कर रही थी। तो
2: हाँ भाई,
0: वाकई में बढ़ाते हैं,
2: इतना अच्छा प्रोग्राम था सुनने में लगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज है 30 जून और आज के दिन पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रोत ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे।
0: सुनने में नाम थोड़ा वैज्ञानिक लगता है लेकिन बात हम सबकी सुरक्षा और अंतरिक्ष की जानकारी से जुड़ी है। वैसे क्या आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड आखिर क्या होता है?
2: बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि एस्टेरॉयड चट्टानों और धातुओं से बने छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। इनमें से ज्यादातर मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं।
0: तो फिर सवाल ये उठता है कि इनके नाम पर एक पूरा दिन क्यों मनाया जाता है? वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं।
2: बिल्कुल सही बात। तो इसके पीछे वजह ये है कि 30 जून 1908 को रशिया के साइबेरिया एरिया में तुंगुस्का में एक विशाल अंतरिक्ष पिंड के जब वो आकर विस्फोट हुआ हमारी धरती पर, तब लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जो जंगल था वो तबाह हो गया था।
0: इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से भी हम बचा सके।
2: बिल्कुल। और दोस्तों इस दिन को मनाने के पीछे इंटेंशन डर फैलाना नहीं था बल्कि विज्ञान को समझना और भविष्य के लिए तैयार रहना था।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं हो ना कि लोग सोचे कि उफ अब मेरे ऊपर आकर कुछ ना गिरे, तो डर फैलाना इंटेंशन नहीं थी।
2: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों आज दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार आसमान पर नजर रखते हैं और ऐसे क्षुद्र ग्रहों को पहचानते हैं जो भविष्य में पृथ्वी के करीब आ सकते हैं।
2: बिल्कुल, विज्ञान हमें यही सिखाता है कि जिज्ञासा, जानकारी और तैयारी, ये तीन चीजें मिलकर हर चुनौती का सामना करना आसान बना देती हैं।
0: तो आइए आज से इस विशेष दिन पर अंतरिक्ष के अनजाने रहस्यों को जानने की उत्सुकता बढ़ाते हैं। हम कोशिश करेंगे, है ना, कि एक तो होता है कि टूटता है तारा तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो और भी बाकी सारी जो चीजें अंतरिक्ष में होती है उनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए।
2: बिल्कुल दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त है एक बेहतरीन से गीत का।
0: जो आजकल मौसम है काफी दिनों की गर्मी के बाद वो
2: सुहाना,
0: हाँ वो जादुई एहसास हम इस गीत के साथ सेलिब्रेट करेंगे।
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।

चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षी त्यागी और आप सुन रहे हैं कहानी के उस पार में एपिसोड नंबर 2 योगेश्वर का निर्णय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना जंगल की नीरव शांति के बीच रहने वाली भोली भाली किरण ने अनजाने में हाथों के कंगन कानों में पहन लिए। उसकी वही मासूम अदा नरेंद्र के मन में ऐसा भाव जगा गई जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पाया। उस छोटी सी घटना ने उसके हृदय में एक ऐसी स्मृति अंकित कर दी जो जीवन भर उसका साथ निभाने वाली थी। तो दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं उस आश्रम की ओर जहाँ नियति नरेंद्र और किरण की जिंदगी का अगला अध्याय लिखने वाली थी। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वो बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसार पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लेती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वो बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। हाथों के कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। दो टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की ये घटना मुझे मरते दम तक याद रहेगी, कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ, प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। तो दोस्तों, योगेश्वर ने आखिर बिना कुछ कहे किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में क्यों सौंप दिया? क्या एक नई शुरुआत थी या आने वाले समय की किसी बड़ी परीक्षा का संकेत? और क्या जंगल की मुक्त हवा में पली किरण संसार के बदलते रंगों में भी अपनी वही मासूमियत बचा पाएगी? इन सवालों के जवाब लेकर मैं फिर लौटूंगी अगले एपिसोड में, कल शाम 5:15 बजे। दोस्तों, ये थी कहानी आपने जो सुनी। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और हमारे प्रोग्राम्स की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम हमारे सही जवाब देने वाले लिसनर्स का नाम ना ले दें। लेकिन हम नाम बताएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़े ब्रेक के बाद। और ब्रेक होगा ये म्यूजिकल ब्रेक। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था सवाल, और हमारा सवाल था फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है, और इसका सही जवाब है फुटबॉल। तो आइए जानते हैं हमारे सही जवाब देने वाले लिसनर्स के नाम, और वो नाम है मोहम्मद जाहिद अली, आकाश रस्तोगी, जावेद निजामी, मोहम्मद रफीक पवार, सुरेश रकनेजा, मोहम्मद असलम सैफी, धीरज भाई रबारी, अरविंद कुमार, राधेश्याम पांडे, मोहम्मद यासीन अंजन, जाकिर मंसूरी, खिलाश फुलमानी, नवी हसन अब्बासी, राम कुमार देवार, अनिल बिगोट के, दिग्दर्शन गौर, राजकुमार दूदी, दिनेश वर्मा, इरशाद अहमद, उत्तम कुमार भगत, प्रवीण चौहान, सुदर्शन शाह, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, ईशान त्रिवेदी और विठल सुरोशे।
1: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल सब सेम है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और अपनी साथी नंदिनी और मदीहा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। तो प्रमोद भाई।
1: हाँ झुमरू भैया।
0: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राजी खुशी?
1: भैया बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम अपने सुनाओ भैया, सब ठीक ठाक तो?
0: वाह भैया बिल्कुल ठीक ठाक हम तो। और आज भैया यो समझ लो, अरे 200 दिन में आज पसीना सूखा भैया।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, आज तो मौसम बहुत बढ़िया वाला हो गया, हवा चल रही और हो सके भैया बारिश भी आ जाए।
0: बस देखो भैया, जब बादल आए हैं तो बारिश भी होगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और भैया हम तो बस ये समझ लो कि ठंडी ठंडी हवा से, और भैया जो बादलों की मलहार से चल रही है, और भैया इसे देख कर राज्य से हो रहे हैं।
1: अरे भैया राज्य तो होना ही पड़ेगा, और भैया राज्य होने का मतलब यू भी ना है कि तुम भैया हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओ, कुछ काम ही ना करो।
0: ना भैया देखो, काम तो खेती बाड़ी के सहारे करने पड़ेंगे। और भाई देखो, इससे पहले कि हम और बातचीत करें,
1: अच्छा
0: तो बहन भाइयों को भाई यो बता देते हैं कि भैया आज है मंगलवार।
1: बिल्कुल।
0: और हर मंगलवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: और भैया देखो, आज इस पाठशाला में किसान भाई सुनेंगे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: बिल्कुल। तो जो हमारे किसान भाई भाई बासमती धान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और उनकी कोई समस्या है, तो भैया वो अब से लेकर और भैया शाम 6:45 तक भाई सीधे हमारे स्टूडियो फोन कर सकते हैं। और फोन करने के लिए भाई नंबर आप बताओ जल्दी।
1: देखो भैया नंबर तो किसान भाई जाने ही है, हम बता रहे हैं नंबर है 94570 78288। ये तो हो गया हमारे मोबाइल का नंबर,
0: ठीक।
1: और भैया हमारा दूसरा भी एक नंबर है, वो है 01341230105। यो नजीबाबाद का भैया, पहले इसमें एसटीडी कोड लगाना है 01341। और फोन नंबर हमने बता ही दिया 230105।
0: तो मैं देखो आपने फोन नंबर बता दिए हैं, और अब भाइयों ने जो फोन करना शुरू कर दिया होगा, तो भैया आओ अब शुरू करते हैं आज का बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: बिल्कुल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
4: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
4: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल। और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
4: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
5: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
6: किसान

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम वासवानी धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुबेंद्र सिंह झुमरू।
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। और झुमरू भैया,
0: हाँ भैया,
1: देखो भैया, जैसे कि हम अभी बता रहे थे किसान भाइयों को कि आज हमारी इस बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में हम सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है
0: हेलो
1: हेलो बासमती।
0: तो भाई देखो, नंबर हमें एक बार फिर से अपने भाइयों को बता रहे हैं जिससे कि भैया वो फोन कर सके। तो भाई नंबर बताओ जल्दी से।
1: बिल्कुल भाई, नंबर बता रहे हैं, हमारे नंबर हैं 94570 78288।
0: ठीक,
1: और भैया दूसरा नंबर है 01341230105।
0: और भाई हमारे आज के कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ है भैया, उनका परिचय भी है, वो है डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर, जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। और भाई इसके अलावा आज हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ और हैं,
1: बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और दोनों ही विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं।
0: तो भाई दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका दोनों का।
2: जी धन्यवाद शुभेंद्र जी। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर, वैज्ञानिक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ और एपीडा से आप सबका स्वागत करता हूं।
0: और डॉक्टर साहब देखिए, आप देखते हैं कि हमारे कौन से भाई लाइन पर हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो बासमती,
3: गगन यादव
1: जी। जी जी जी गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बासमती की खेती आप कर रहे हैं।

0: तत्वों के बारे में आपको डॉक्टर तोमर जी बता रहे हैं।
1: किसान भाइयों, यदि आपने रोपाई करने से पहले उसमें DAP, NPK या पोटाश नहीं दिया है तो रोपाई के तुरंत बाद उसमें आप अपनी खुराक दे सकते हो। सामान्य तौर पर यदि आप 12, 32, 16 NPK देना चाह रहे हैं तो उसकी 35 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, या DAP की 30 किलोग्राम मात्रा प्लस 20 किलोग्राम पोटाश कम से कम आपको दे देना चाहिए रोपाई के तुरंत बाद में अपने खेत में या रोपाई से ठीक पहले।
0: ठीक है जी, और कोई प्रश्न है आपका?
2: सर और कोई नहीं।
0: तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा।
3: आपने हमारे पास में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो बासमती।
4: हेलो बासमती,
3: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
4: बता रहा मैं जुमरू भाई और प्रमोद को, मेरी राम राम।
3: राम राम जी, हमारी भी राम राम।
4: लोगों को भी मेरा नमस्कार।
0: जी जी जी, हाँ बताइए।
4: मैं ग्राम का धरोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से आपका निमित्त हुआ था, मदन गिरी बोल रहा हूँ।
3: जी जी जी, मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज आपका फोन इस हेलो बासमती कार्यक्रम में लगा है। बासमती की आप खेती कर रहे हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं आज आप?
4: मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि बासमती हमने जो है टूडल की रोपाई कर दी है।
0: जी जी जी,
4: और उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि खरपतवार के जो हो जाते हैं
0: जी,
4: तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हमारे साथ है, वो आपको बता रहे हैं इसके बारे में।
4: जी जी
0: जी जी, डॉक्टर साहब।
5: हाँ, राम राम किशन भाई, आपको
4: राम राम। राम राम जी,
5: आप जैसे तुरल वैरायटी का
4: जी जी
5: रोपाई कर चुके हैं
4: जी जी,
5: तो इसमें जो वीडिंग की आप बात कर रहे हैं खरपतवार को, तो कोशिश करिए आप मैनुअल वीडिंग करने का, क्योंकि जो हमारी बासमती की वैरायटी को प्रोडक्शन करते हैं उसमें मिनिमम हम क्रॉप रेसिड्यू का यूज करते हैं, और तत्पश्चात अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडी साइड कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं।
3: जी, इस बारे में डॉक्टर प्रमोद तोमर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: किसान भाइयों, रोपाई करने के 72 घंटे के अंदर आप यदि वीडी साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेटिला क्लोर की 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप पानी देने लगाने के बाद में खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं। पानी बोतल, एक वीडी साइड स्प्रे बोतल आती है, उसमें सॉल्यूशन बना के और आप उसको छिटक दे तो आपका वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। यदि आपके खेत में 25-30 दिन के बाद में वीड दिखाई देते हैं तो एक बिस्पारिक पैक सोडियम आता है, नोमनी गोल्ड के नाम से आता है, उसकी 100 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
4: अच्छा जी,
3: तो मदन गिरी जी, हमें लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। कोई और जानकारी चाहते हैं आप?
4: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बिल्कुल,
3: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। और लगातार हमारे किसान भाई हमें फोन कर रहे हैं। एक और भाई लाइन पर है, देखते हैं।
3: जी जी जी,
0: हेलो
6: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो बासमती,
6: नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
6: सर, मैं सुमित शर्मा डिस्ट्रिक्ट संबल बताऊँ।
3: अमरोहा से बोल रहे हैं सुमित जी?
6: सर संबल,
1: चंबल।
3: अच्छा,
0: चंबल चंबल जी, बताइए सुमित जी, क्या समस्या है आपकी? जी
6: तो सर, उसमें कंदुआ ज्यादा आया, तो सर कंदुआ आया ही ना, इसलिए
0: जी।
3: अच्छा,
1: दरअसल क्या होता है, जब आप बासमती करते हैं तो वो कंडवा आएगा तो बाली निकलने के बाद उसका पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। एक तो आप जब भी बासमती लगाएं तो बीज उपचार करके लगाएं। दूसरा क्या है, कोसाइड के नाम से एक दवा आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे होती है। जब गोब अवस्था में आपकी फसल हो उस समय उसका स्प्रे कर दे, और यूरिया की मात्रा का अपने खेतों में इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में ना करें। पोटाश अपनी फसल को जरूर दें तो कंडवा आपके खेत में ना के बराबर आएगा।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके से देखिए संतुलित मात्रा में हमें जो खाद उर्वरक है वो डालने हैं।
3: जी जी जी,
0: और प्रमोद भाई देखिए, और किसान भाई हमारे फोन कर सके तो आप जल्दी से नंबर बता दीजिए।
3: जी जी, हम नंबर बता रहे हैं 94-570-78-288। दूसरा नंबर है 01-341-230-105। इन दोनों ही नंबरों पर किसान भाई हमारे पास में फोन कर सकते हैं और बासमती धान की जानकारी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए एक भाई हमारे लाइन पर है। हाँ हेलो, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए।

0: हेलो बासमती
1: जी बोलिए। लगता है संपर्क हमारा इनसे टूट गया है।
0: हेलो,
1: हेलो
0: अपने रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए।
2: हेलो
0: हाँ जी
1: जी
0: बताइए। हाँ
2: जी सुरेंद्र भाई और प्रमोद जी को मेरा सलाम आदाब।
0: राम
1: जी
0: राम
1: जी
0: आदाब।
1: हमारे ही तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बताइए कौन बोल रहे हैं।
2: जी मैं मुस्तकीम बोल रहा हूँ सेवारा से।
1: जी जी मुस्तकीम जी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज क्या जानकारी लेना चाहते हैं बासमती धान के बारे में आप।
2: सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे हम अब ये बासमती लगा रहे हैं तो कौन सी बासमती जो है अच्छी प्रजाति कोई बताइए कि जिससे हम बासमती की अच्छी फसल हो सके।
0: जी
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
3: देखो बासमती का चुनाव यदि करना होता है ना वो अपने फसल चक्र और आसपास की मंडी के आधार पर करना होता है कि हमें कौन सी लग ठीक है ना। यदि आप धान के बाद में गेहूं बोना चाह रहे हैं तो आप कोई भी बासमती की वैरायटी लगाओगे वो अच्छा उत्पादन देगी। लेकिन यदि आप धान के बाद में सरसों मटर आलू गन्ना लेना चाहते हैं तो फिर आपको कम अवधि वाली वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1979 1985 का आप लगा सकते हैं। ठीक है ओके।
1: जी जी आपने हमारे पास में फोन किया बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबेंद्र भाई देखते हैं कि अब कौन भाई लाइन पर हैं।
0: बिल्कुल देखिए लगातार हमारे भैया के फोन आ रहे हैं। हेलो हेलो बासमती
1: आप रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए और अपना नाम बता दीजिए। हाँ
4: हेलो
1: जी हेलो बासमती में आपका
4: हेलो मैं
1: स्वागत है।
4: छत्रपाल बोल रहे हूँ।
1: छत्रपाल जी थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाइए आप। और कहाँ से बोल रहे हैं आप।
4: मैं चहला से बोल रहा हूँ। चहला
1: जी जी जी जी जी बहुत बहुत स्वागत है
4: से
1: आपका।
4: मूलपुर के पास चहला है।
1: जी चहला से बोल रहे हैं।
4: मेरी आवाज नहीं आ रही आपको।
1: बिल्कुल आपकी आवाज हमें मिल रही है। आपने बासमती धान लगाया हुआ है या आप उसकी रोपाई इस समय कर रहे हैं तो क्या जानकारी
4: हाँ
1: लेना
4: मैं
1: चाह रहे
4: रोपाई
1: हैं
4: तो कर रहा हूँ लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पौधे से पौधे की लाइन कितनी कितनी दूर तक होना चाहिए पौधे से पौधा।
1: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप।
0: जी बिल्कुल
3: किसान किसान भाइयों पौधे से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ठीक है हाँ। और यदि आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हो तो 1 से 2 प्लांट भी आप रोपित कर सकते हो। गहराई का जरूर ध्यान रखें कि 1 इंच से गहरा ना रोपें। ठीक है ना।
4: इसमें बासमती कौन सी लगानी चाहिए कौन सी बढ़िया है।
3: बासमती सब अच्छी है लेकिन यदि आप टूडल में पसंद करते हो तो पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 6 टूडल लगा सकते हो। और यदि आप टूडल की बजाय दूसरी लगा रहे तो 1121 और 1885 बासमती अच्छी है।
0: बिल्कुल तो ये वाली बासमती आप लगा सकते हैं। और लगातार हमारे किसान भाई हमें फ़ोन कर रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हमसे बातचीत करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे राय मशवरा लेना चाहते हैं तो वो सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं
1: 9450-70-78-288 और भैया दूसरा नंबर है 01-341-230-105।
0: हेलो
1: हेलो
4: नमस्कार।
0: हाँ
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी,
0: जी बताइए कौन बोल रहे हैं।
4: मैं ग्राम विजयला थाना सिवाना कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
1: जी राशिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राशिद जी खेती बाड़ी ठीक ठाक है आपकी बासमती में। बताइए क्या जानकारी लेनी है।
4: जी बासमती में जानकारी लेनी है अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई हमारे क्षेत्र में।
0: जी जी
4: अब बासमती का जो पनीर जैसे पनीर कह देते जो पनीर लगा खड़ा है तो उसे उखाड़ के लगा दे फिलहाल ट्यूबवेल से या नहीं।
1: कितने दिन का हो गया आपका।
4: पनीर तो काफी बड़ा हो गया लेकिन बारिश तो कोई नहीं है। आप ट्यूबवेल से पानी कहाँ तक देंगे उसे
0: हाँ,
4: लगा दें।
0: जी बिल्कुल देखिए डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं।
3: देखो यदि आपकी पौध अभी 21 से 25 दिन की हो गई है तो रोपाई कर देनी चाहिए। ठीक है जितना लेट रोपाई करोगे तो उतना ही उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है तो आप
4: पानी की परेशानी पड़ सकती है समय जैसे ट्यूबवेल से एक और बारिश नहीं हुई।
3: देखो अब जून आज खत्म हो रहा है और 7 से 10 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। ठीक तो जब तक आप ट्यूबवेल के पानी से रोपाई कर दे एक एक टुकड़ों में करते जाओगे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपकी पनीरी भी ओवर नहीं होगी और आपका जो उत्पादन है वो भी नहीं घटेगा। ठीक है
4: हाँ इतना तो हो जाएगा 1-2 दिन में तो गहन फिरेगी
3: हाँ,
4: फिर उसके बाद लगाएंगे इतने बारिश हो जाएगी
3: बिल्कुल
4: खेत की मार लेगा पानी।
3: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल देखिए आज से बादलवाही शुरू हो गई है तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी तो रोपाई का काम शुरू हम कर सकते हैं।
1: और झुमरू भैया देखिए हम अपने किसान भाइयों को लगातार इस कार्यक्रम

0: भाग लेने के लिए अपने फोन नंबर बता रहे हैं और किसान भाइयों के फोन भी आ रहे हैं। देखिए फिर एक फोन आया है।
1: बिल्कुल, हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, आप
0: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए और अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर लीजिए।
1: लगता है कि फोन इनका कट गया है। और हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि जब भी आप फोन करें तो रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं या रेडियो की आवाज़ कम कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है।
0: और देखिए कौन है, आप देखते हैं।
1: हेलो हेलो बासमती,
0: हेलो हेलो हेलो।
1: उम्मीद है कि ये किसान भाई जो है दोबारा से प्रयास करेंगे और हमारे किसान भाई अब से लेकर और 6:45 तक हमें फ़ोन कर सकते हैं और बासमती के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखिए हमारे किसान भाई लगातार फ़ोन तो हमें कर ही रहे हैं और भाई हमें इंतज़ार रहता है हमारे किसान भाइयों की फ़ोन कॉल्स का, क्योंकि वो जानकारी लेते रहते हैं। हेलो।
1: हाँ
2: हेलो
1: जी, हेलो बासमती
2: जी। हेलो बासमती
0: हाँ जी,
1: जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: मैं नदीम बोल रहा हूँ
1: हाँ नदीम जी, बताइए।
2: जी। सर मैं कह रहा हूँ कि बासमती लगाने के लिए कितनी दूरी रखनी चाहिए
0: अच्छा, रोपाई करते समय।
2: पौधे से पौधे की। जी
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सुनिए आप ध्यान से।
3: नदीम जी, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए, तो उससे
2: जी
3: आपका
2: अच्छा,
3: उत्पादन अच्छा होगा और हर पौधे को
2: जी
3: लाइट और हवा बराबर मिलेगी और न्यूट्रेंट बराबर मिलेंगे।
2: जी जी
0: तो देखिए आपको अब ये पता चल ही गया है कि आपको किस तरीके से रोपाई करनी है। और झुमरू भैया,
1: हाँ भैया
0: देखो भाई फोन तो आ ही रहे हैं, ये कुछ संदेश क्यों ना इस समय सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल। तो भाई देखिए, फिलहाल लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
0: ठीक है भैया।
4: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
5: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
4: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
5: खुशहाली का नया प्रयोग।
6: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान भाई इस समय सुन रहे हैं
7: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
7: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ
1: द्वारा प्रायोजित बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
8: अरे मास्टर जी।
9: हाँ भैया।
8: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
9: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
8: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
9: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
8: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
10: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
11: किसान

0: तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती में। और फोन करने के लिए हमारे फोन नंबर है,
1: भाई देखिए नंबर हम लगातार अपने सभी सुनने वालों को बता रहे हैं, नंबर है 94-570-78-288। और हमारा दूसरा नंबर है 01-341-230-105।
0: और अब देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: जी जी बोलिए, अपना नाम बता दीजिए।
2: हाँ जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: हाँ जी मैं ग्राम पोस्ट रामनगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बात कर रहा था
1: जी। जी जी सत्यवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: बताइए क्या जानकारी चाह रहे हैं आज।
2: ये जानकारी तो देखिए बहुत सारी बिल्कुल साहब किसान भाइयों के द्वारा, और साहब डॉक्टर साहब का भी स्वागत है आपकी बासमती रेडियो पाठशाला में आ रहे हैं साहब जानकारी देने के लिए। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है
1: जी जी।
2: और मैं ये थोड़ी सी जानकारी यही लेना चाहता हूँ, जैसे अब ये बासमती तो कुछ लगा रहे, कुछ लगने वाली, हम भी एक दो दिन पर लगाने की योजना बना रहे थे
0: जी,
2: के कवक फंजाई जैसे ये रोग ना लगे उसके लिए जो ये पनीर उखाड़ेंगे तो उसको कौन सी दवाई से उपचारित कर दे।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी जानकारी लेनी चाहिए और डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं।
3: राम राम किशन भाई, जो आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, सीडलिंग निकालेंगे, उसे ट्राइकोडर्मा में उपचार करने का प्रयास कीजिए। 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 फीट वाटर का एक हौद बना के, और उसमें 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा का क्वांटिटी घोल के, और जो सीडलिंग है आप उसमें कम से कम आधे घंटे के लिए डुबो दें, तत्पश्चात उसको ट्रांसप्लांटिंग करें तो जो फंगिसाइड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।
1: आचार्य जी कोई और सवाल है आपका बासमती धान के संबंध में?
2: बस सवाल तो जैसे जैसे आगे ये 5 साल बढ़ेगी, हर महीने के आखिरी मंगल को साहब जैसे जैसे पौधी आगे बढ़ेगी, कोई चीज नहीं आओगी तो पूछते रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज हमारे पास में फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और देखिए हम आपको बता देते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं बासमती निर्यात विकास संस्थान मोदीपुरम मेरठ में,
1: और हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में।
0: हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी हेलो बासमती।
4: हाँ जी नमस्कार साहब।
1: नमस्कार जी,
4: और जो यहाँ बैठे विशेषज्ञ उनको भी नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: बासमती के मैं बारे में जानकारी ये चाहता हूँ कि कौन सी अच्छी प्रजाति है, थोड़ा मैंने रेडियो लेट मतलब खोला अपना अभी अभी चलाया।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
5: देखो बासमती की सभी प्रजातियाँ अच्छी हैं, लेकिन 12 से 15 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको किसान अपना रहे हैं, उगा रहे हैं। आप पर निर्भर करता है कि आपके आसपास की मंडी में जो बासमती बिकती हैं उनको उगाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या आती है, हम अच्छी बासमती उगा तो लेते हैं, आसपास की मंडी में उनको खरीदार नहीं मिलता तो आपको उसका रेट नहीं मिल पाता। ज़्यादातर किसान भाई जो पसंद करते हैं वो करते हैं फसल चक्र के आधार पर। यदि आपके यहाँ मटर, सरसों, गन्ना, आलू लगना है तो आपको कम अवधि वाली वैरायटियों का लगाना चाहिए, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847 आदि प्रजातियाँ, ठीक है। और यदि आप तूडल वैरायटियों में जाना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1 बहुत अच्छी वैरायटी है, उसको आप लगा सकते हैं। इसी का एक सुधरा हुआ रूप आई है पूसा बासमती 1882, उसको लगा सकते हैं, वो सूखा रोधी है, कई बार पानी की समस्या बनती है तो उसको वो झेल जाती है।
4: क्या पूसा
5: बासमती 1882?
4: अच्छा,
5: तूडल में आती है ये।
4: जी जी ठीक है। तो ये कितनी कितनी अवधि में बन जाती, तैयार हो जाती है?
5: ये लगभग 135 दिन में तैयार हो जाती है, बीज से बीज।
4: जी जी
5: ठीक है जी।
4: सर वैसे देखो मैं दृष्टिवादी हूँ, इसलिए मैं आपके जो मैंने प्रोग्राम तो रोज सुनता हूँ, मगर पत्र वगैरह नहीं डाल पाता।
0: जी जी जी,
4: ये वैसे प्रोग्राम सारे सुनता हूँ, बहुत मेरे का बहुत शौक है।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इसी तरीके से हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते रहिए, और हमारे पास में आप पत्र नहीं लिख सकते तो फोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो भाई देखिए हमारे भाई जो है लगातार फोन कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं बासमती धान के बारे में कि कौन सी प्रजाति लगानी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और किस तरीके से हमें उसकी देखभाल करनी है, और अभी भी अगर हम बात करें तो 15 मिनट हमारे पास में पूरे पूरे शेष बचे हैं, किसान भाई जानकारी ले सकते हैं तो नंबर एक बार फिर से बता दीजिए प्रमोद जी।
1: जी हमारे किसान भाई 94-570-78-288 नंबर पर फोन कर सकते हैं। और देखिए एक भाई कोई लाइन पर है।
0: हेलो
6: हेलो
0: हाँ जी हेलो बासमती
6: साहब से बोल रहे हैं अब्दुल खालिक
1: जी जी अब्दुल खालिक साहब बहुत बहुत स्वागत है
6: जी
1: बासमती
6: मैं आपकी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार
0: जी जी
6: मैं भैंस मेरे घर पास दूध बहाने की क्या दवाई है क्या है वो कुछ नहीं खा रही।
0: हाँ देखिए आज का ये हमारा कार्यक्रम जो है बासमती पर आधारित है तो बासमती धान के बारे में या जो मोटा धान हम लगाते हैं उसकी कोई समस्या है तो आप बताइए। इसके लिए हमारा जो कार्यक्रम है वो हेलो किसान कार्यक्रम 3 जुलाई को होगा उसमें आप फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी
1: जी जी
6: जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो हम ये अपने भाई से बताना चाहेंगे कि देखिए आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेषकर बासमती धान पर आधारित है और हमारे दो विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं तो आप फायदा उठाइए और जानकारी लीजिएगा बासमती धान के संबंध में।
1: हेलो
0: हेलो बासमती
7: हेलो बासमती
1: नमस्कार जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं
7: जी मैं तीरथ सिंह बात कर रहा हूँ गांव फरेदी जिला मुरादाबाद से।
1: जी जी तीरथ सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए बासमती धान के बारे में क्या सुनना चाहते हैं और क्या जानकारी लेना चाहते हैं।
7: सर हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि ये कम अवधि में पकने वाली कोई बासमती हो जिससे कि पानी भी कम लगे और रेट भी ज्यादा मिले ये कोई बासमती बताइए।
0: जी बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कम अवधि की वाली जो हमारी प्रजाति है उनके बारे में डॉक्टर साहब आपको बता
3: देंगे। कम अवधि की प्रजातियों में 1509 है 1692 है 1847 है ये अली वैरायटी हैं इनको आप कम समय में उत्पादन करके अपनी रबी की तैयारी कर सकते हैं। रबी में सरसों आलू उत्पादन के लिए आप खेत में प्रिपेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल और कोई जानकारी चाह रहे हैं आप।
7: जी डॉक्टर यही जानकारी लेनी थी ये कम अवधि पकने वाली है ना ये।
1: जी जी तीरथ सिंह जी आपको देखिए डॉक्टर साहब ने सारी वो प्रजातियां बताई हैं जो कम अवधि में तैयार होती हैं। आज आपने हमारे पास में फोन किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: लगातार हमारे किसान भाई बातचीत कर रहे हैं लगातार हमें फोन कर रहे हैं और मन बहुत ही रोमांचित हो रहा है ना प्रमोद भैया।
1: जी हाँ भैया देखिए हमारे सब किसान भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
0: एक और भाई लाइन पर है।
1: हेलो
0: हेलो बासमती
1: हेलो
0: हेलो बासमती
1: लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और झुमरू भैया देखिए जो किसान भाई ज्यादा जानकारी ले रहे हैं कि उनको कौन सी प्रजाति बोनी है बासमती की भाई वो जानकारी हमारे सभी जो विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं उनको बता ही रहे हैं और किसान भाई इनको नोट कर रहे हैं और अच्छी बात है।
0: और देखिए अब बासमती धान की रोपाई शुरू होने वाली है
1: जी
0: क्योंकि कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और ये माना जाता है कि जुलाई का महीना लगते ही बरसात को शुरू माना जाता है ना भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिए बरसात शुरू हो ही चुकी है लगभग। और कौन भाई लाइन पर है।
0: हेलो
1: तो देखिए अब हमें बासमती धान की रोपाई करनी है किसान भाई कर भी रहे हैं प्रजाति की जहां तक बात है तो इसके बारे में हम बासमती धान की जो और एपिसोड हमने किसान भाइयों को सुनवाए हैं हमने उसमें सब में प्रजाति बताई है और अब हमारे किसान भाई रोपाई से लेकर और आगे किस तरीके से हमें अच्छा उत्पादन बासमती धान से प्राप्त करना है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज दो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं और दूसरे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी जो कि वैज्ञानिक हैं और ये दोनों ही विशेषज्ञ बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ से आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
0: और देखिए जब तक हमारे भाइयों का फोन आता है तो आप कहे तो भैया एक प्रश्न मेरा भी है मैं भी पूछ लूं भैया।
1: बिल्कुल पूछिए भैया।
0: तो देखो बासमती धान की रोपाई होनी है और रोपाई से पहले जो हम नर्सरी उखाड़ते हैं खेत से तो वो भी एक अच्छा कार्य है और सावधानी के साथ में करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम नर्सरी से पौध उखाड़े तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें।
3: जब आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसमें पानी चला दीजिए। पानी चला देने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पौध आसानी से उखड़ के पनीरी में कोई डैमेज नहीं होगा। और दूसरा ध्यान रखें कि उसको ट्राइकोडर्मा से सीडलिंग को ट्रीटमेंट करें।
1: अच्छा
3: क्योंकि 25 दिन के बाद वो पौध निकल रही है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जा रही है तमाम फंगस के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसको सावधानी बरतने के लिए किसी भी फंगीसाइड से ज्यादातर तो हम लोग ट्राइकोडर्मा से यूज करते हैं
0: जी
3: क्योंकि वो बायो केमिकल है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है।
1: अच्छा अच्छा
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि जब हम पनीर उखाड़ें तो भैया उसमें कई बार हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई सूखे खेत से ही पौध उखाड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है ठीक नहीं होता है। इसके लिए सही विधि ये है कि पहले हम खेत में पानी भरें तो उसकी जड़ें ढीली हो जाती हैं और उसके बाद ही भैया हम पौध उखाड़ें।
1: बिल्कुल, देखिए खेत में मतलब नर्सरी के खेत में पानी भरना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें इस पौध को उखाड़ना चाहिए। और भाई एक बार फिर से हम अपने भाइयों को फ़ोन नंबर बता देते हैं।
0: बता दो भैया।
1: किसान भाई हमारे पास में फ़ोन कर सकते हैं 94-570-78-288 नंबर पर। और देखो भाई एक भाई लाइन पर हैं।
0: हेलो, हाँ हेलो बासमती,
1: हेलो हेलो हेलो,
0: अपना नाम बता दीजिए,
1: थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
0: हेलो, आवाज थोड़ी कम आ रही थी और अब फोन कट गया है।
1: और झुमरू भैया।
0: हाँ भैया।
1: देखो आपने तो डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लिया है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: हाँ
1: भाई, देखिए डॉक्टर साहब से हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब हम किसी पौध को उखाड़ते हैं और उसको दूसरे खेत में उसकी हम रोपाई करते हैं
0: भैया, तो एक फोन है भैया।
1: हाँ चलिए।
0: हेलो
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पौध उखाड़ने के बाद जब उसकी रोपाई हमें करनी है, उसकी जड़ को साफ करने के लिए और उसको पौध को भी क्या हमें शोधित करना पड़ेगा?
5: जी दरअसल क्या होता है, जब हम नर्सरी से पौध उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों में मिट्टियाँ लगी रहती हैं
0: जी,
5: और बहुत किसान क्या करते हैं गुच्छी मिट्टी सहित बना देते हैं, थोड़ी देर में वो मिट्टी सूख जाती है तो फिर वो जड़ों को दूसरे खेत में एडजस्ट नहीं होने देते। तो इसलिए जो भी किसान भाई पौध उखड़वाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि गुच्छियों को अच्छे से धुलवाए, उनकी जड़ों में मिट्टी ना चिपकी रहे।
1: अच्छा।
5: तो उसको नए खेत में ले जाओगे और उसको उपचारित करोगे तो वो उपचार भी उसका अच्छे से होगा।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि जो हमारी जड़ों की मिट्टी है उसको हमें अच्छे तरीके से साफ करना है और साफ करने के बाद ही फिर हमें उसकी रोपाई करनी है ताकि जो उसकी जड़ें हैं वो नए खेत में नई मिट्टी में अच्छे से एडजस्ट हो जाए।
1: बिल्कुल। और देखो भैया कौन भाई लाइन पर है।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ हेलो बासमती
1: जी, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
0: हेलो
1: जी, हेलो
8: हेलो,
0: हाँ बताइए। बहुत ही कम आवाज आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं भैया।
1: हम अपने भाइयों को एक बार फिर नंबर बता रहे हैं, नंबर है 01341230105, दूसरा नंबर है 94-570-78-288। इन दोनों ही नंबरों पर किसान भाई 6:45 तक फोन कर सकते हैं और बासमती धान के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखो भैया भाइयों के फोन अब आना थोड़ा कम से हो गए हैं, तो क्यों ना किसान भाइयों की तरफ से एक प्रश्न दोबारा हम ही कर ले भैया।
1: बिल्कुल कीजिए भैया।
0: तो डॉक्टर साहब देखिए एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि कुछ भाइयों ने हरी खाद के लिए ढेंचा लगा रखा है, तो रोपाई से कितने दिन पहले डॉक्टर साहब उसकी पलटाई करनी चाहिए हमें?
5: किसान भाइयों ढैचे की यदि खेत में पलटाई करनी है तो 45-40 दिन की अवस्था बहुत अच्छी होती है बुआई के बाद
0: जी,
5: ठीक है। और दूसरा यह है कि आपको ढैचा ऐसे बोना चाहिए कि जब आप नर्सरी डालने चाह रहे हैं उससे 20 दिन पहले आप ढैचा डाल दें
0: जी,
5: तो जब आपकी नर्सरी 21-22 दिन की होगी तो उस समय आपका ढैचा 40-42 दिन का हो जाएगा
0: जी।
5: उधर उसको जुतवा दें, तो जुतवाने के बाद में 1-2 दिन बाद भी आप रोपाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी मिट्टी के लेवल से

0: जी,
1: हाँ जी
0: तो
1: बोलिए।
0: जानकारी क्या लेना चाह रहे हैं आज आप?
1: मैं ये कितना धान निकलता है उसमें?
2: कौन सी प्रजाति में कितना धान निकलता है?
1: नूरी नूरी वास्तु।
2: तूड़ी।
0: अच्छा
1: हाँ
2: जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बता देंगे कि जो तूड़ी हमारी प्रजाति है उसमें से।
3: टूडल जो बोलते हैं, पूछा बासमती 1 या 1637, यदि वो वैरायटी आपने लगाई है तो इसमें आपका 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक धान निकल जाता है। ये निर्भर करता है आपके मैनेजमेंट
1: खाली
3: पर।
1: नूरी नूरी।
0: नूरी
3: नूरी
0: हाँ
3: बासमती में नहीं आती,
1: हाँ
3: नूरी
1: हाँ
3: प्रजाति बासमती में नहीं आती। ठीक है,
2: हाँ देखिए, ये बासमती की
1: बासमती
2: प्रजाति नहीं है नूरी, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं।
1: पोल लगाई थी बासमती की, तो गया नूरी बासमती ले आओ।
0: अच्छा हाँ,
1: हाँ
0: तो ये नूरी नाम किसी लोकल को और वैसे दे रखा होगा। यदि एक्चुअल में बासमती की बात करें तो ये नूरी बासमती में कोई नहीं है।
1: अच्छा
0: बासमती में नूरी प्रजाति नहीं है।
2: बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि भाई इनकी शंका का समाधान हो गया
0: और
2: होगा।
0: देखिए, कई बार हमारे किसान भाइयों के साथ में ऐसी धोखाधड़ी भी हो ही जाती है डॉक्टर साहब।
2: और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, जब हम बीज लाएं तो जो हमारे प्रतिष्ठित बीज भंडार है वहां से हमें लाना है,
0: बिल्कुल
2: और जो राज के बीज भंडार है या जो हमारी संस्था है वहां से हमें बीज लाना है, तो हमें अच्छा, शुद्ध और बढ़िया बीज मिलेगा।
0: जी। देखिए, हमें बीज लेना है, फसल अच्छी तभी होगी जब हमारा अच्छा बीज होगा और विश्वसनीय दुकान से वो खरीदा गया होगा।
2: बिल्कुल, और इससे पहले कि देखिए हमारे कार्यक्रम का समय संपन्न हो जाए, तो डॉक्टर साहब से एक बात और हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए हम रोपाई करते हैं, तो रोपाई के समय में ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी है?
3: रोपाई के समय एक तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि हम लोग जब पडलिंग करा देते हैं तो पूरे खेत में पानी भर के रखते हैं,
2: जी
3: तो पानी को थोड़ा कम कर दे तो उसमें जो छोटे छोटे टापू बनेंगे तो उनको फैला दे, तो उससे हमारे एक तो पानी बचेगा,
0: जी
3: क्योंकि हम बाद में फिर उस जगह पे पानी चढ़ाने के लिए अपनी ट्यूबवेल को एक्स्ट्रा चलाते रहते हैं।
0: जी जी जी
3: एक तो ये रहे। दूसरा, डोलों से हटकर थोड़ा सा बासमती को रोपें ताकि वहाँ उसमें डोल पर हम मिट्टी चढ़ा सके, उसकी साफ सफाई रख सके, तो जितनी भी बीमारी कीड़े हैं वो वहाँ पनपेंगे नहीं, तो आपकी फसल में पेस्टिसाइड लगाने से आप लोग बच जाएंगे।
0: जी
2: बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से हमें अपने खेत में पानी भरना है और सही तरीके से मेड़बंदी करनी है, ताकि जो हमारे खेत का पानी है वो बाहर ना निकले और हम अच्छे तरीके से भैया रोपाई कर सकें।
0: बिल्कुल, और देखो डॉक्टर साहब समय समय पर बताते ही रहते हैं कि हमें अच्छी गुणवत्ता युक्त तो बासमती किस प्रकार से तैयार करनी है। वो तभी हो सकती है जब हम अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और उसमें हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, रोपाई का ध्यान रखेंगे, प्रजाति का ध्यान रखेंगे।
2: बिल्कुल, तो और हमारे किसान भाई जो है जागरूक किसान भाई हैं, और वो लगातार इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, अच्छे तरीके से धान की रोपाई करते हैं, अच्छा बीज लाते हैं, अच्छी पौध हम तैयार करते हैं। और प्रमोद भाई
0: जी भैया,
2: भाई, अब अपने बहन भाइयों को हम ये बता देते हैं कि हमारा अगला कार्यक्रम, यानी कि भैया जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा जुलाई महीने में, हेलो बासमती, वो कब होगा?
0: बिल्कुल। देखिए, उससे पहले हम क्यों ना बता दें कि आज के हमारे विशेषज्ञ कौन थे। तो
2: हाँ बिल्कुल, बताइए।
0: आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर, वैज्ञानिक अधिकारी, और दूसरे थे डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो कि वैज्ञानिक हैं, और दोनों ही विशेषज्ञ बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ से हमारे कार्यक्रम में आए थे।
2: और देखिए, दोनों ही वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमारे किसान बहन भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनकी शंकाओं का समाधान किया है। तो दोनों ही हमारे विशेषज्ञों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब भैया हम
3: किसान
0: अपने,
3: भाइयों धन्यवाद आप सबका भी।
0: और झुमरू भैया,
2: हाँ भैया,
0: किसान भाइयों को बता देते हैं, अगला जो हमारा हेलो बासमती कार्यक्रम होगा वो होगा 28 जुलाई 2026 को।
2: तो भाई हर मंगलवार को बासमती धान के बारे में तकनीकी जानकारी लेने के लिए और रसायन मुक्त बासमती धान उत्पादन करने के लिए सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम
4: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
5: अरे मास्टर जी,
6: हाँ भैया।
5: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
6: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
5: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
6: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
5: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
7: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: झुमरू भैया।
3: हाँ भैया।
2: देखो भैया, ये बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला तो सुन ली, भैया कुछ और भी है क्या थारे धोरे को?
3: भाई देखो, मौसम की चिट्ठी हमारे पास है।
2: अच्छा।
3: और भैया मौसम की चिट्ठी के अनुसार भैया जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भैया आंधी तूफान और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है अगले 5 दिनों तक।
2: अच्छा, तो भैया देखो मौसम को देखते हुए किसान भाई अब अपने खेतों में काम करेंगे और भैया अब हमें भी देखो समय के हिसाब से काम करना है। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं और दोनों भैया कर लेते हैं
3: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका श्री जगन्नाथ टीला मंदिर नजीबाबाद में आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट में। श्रोताओं, नजीबाबाद के ऐतिहासिक और आस्था से सराबोर श्री जगन्नाथ टीला मंदिर में जहां हाल ही में एक ऐसा अलौकिक नजारा देखने को मिला जिसने हर भक्त का दिल जीत लिया। मौका था श्रीहरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित भव्य छप्पन भोग उत्सव का। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट हो तो पूरा माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। इस उत्सव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु हवा में तैरती कपूर और अगरबत्ती की महक और चारों तरफ गूंजते भगवान जगन्नाथ के जयकारे।
1: बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बोलो जगन्नाथ की राम मंदिर की जय। बोलो श्री श्रीनाथा गोविंद देव भगवान की जय। बोलो कल होने वाली नजीबाबाद में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। बोलो श्री प्रभुपाद की। बोलो नजीबाबाद भक्त वृंद की।
0: इस अलौकिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई 27 जून की शाम 3:30 पर। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का पावन स्नान अनुष्ठान संपन्न किया गया। शुद्ध जल और पवित्र पंचामृत से प्रभु को स्नान कराया गया, जिसे देखना अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात थी। स्नान के ठीक पश्चात प्रभु का अत्यंत दिव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। रेशमी वस्त्र, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की मालाएं और माथे पर चंदन का तिलक। भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी का ये रूप इतना सुंदर था कि जो कोई भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। भक्तों की आंखें प्रभु की इस मनमोहक छवि को अपने दिलों में बसाने के लिए आतुर थी। श्रृंगार के बाद मंदिर परिसर में एक भव्य और पवित्र हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रों की आहुतियों से पूरा वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। इस धार्मिक अनुष्ठान को गरिमा दी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने। इस पावन हवन में मुख्य यजमान के रूप में संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी और संस्था के संयोजक श्री संजीव अग्रवाल जी उपस्थित

0: रहे। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ विश्व कल्याण की कामना करते हुए पूर्णाहुति दी। नजीबाबाद के इस श्रीहरि संकीर्तन मंडल ने जिस अनुशासन और आत्मीयता के साथ इस पूरे आयोजन को संभाला वो वाकई तारीफ के काबिल है। हर एक व्यवस्था सुचारू थी और हर भक्त के चेहरे पर एक असीम शांति और संतोष का भाव था।
1: हरे कृष्णा, मैं राधिका अग्रवाल नजीबाबाद से हरि संकीर्तन मंडल के जो संस्थापक हैं संजीव अग्रवाल उनकी धर्मपत्नी हूँ और आज 14वीं जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की सबको बहुत मंगल बधाई है। उसके उपलक्ष्य में हमारे मंदिर में आज भगवान का स्नान यात्रा हुई, उसके बाद हवन हुआ और अब हमारा कीर्तन हुआ इस्कॉन हरिद्वार भक्तों द्वारा और अब हमारा छप्पन भोग और भंडारा सभी भक्तों के लिए यहाँ पे कराया जा रहा है। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा मैया, जय बलदाव मैया।
0: और अब बात करते हैं इस उत्सव के सबसे मुख्य और प्रतीक्षित भाग की, यानी महाप्रभु जगन्नाथ जी का छप्पन भोग। तरह तरह के पकवान, पारंपरिक मिठाइयां, फल और अनगिनत व्यंजनों से सजे थाल जब प्रभु के सम्मुख रखे गए, दृश्य देखते ही बनता था। हर एक व्यंजन को पूरी शुद्धता और अगाध प्रेम से तैयार किया गया था। लेकिन रुकिए, इस बार के कार्यक्रम में एक बेहद खास और अनोखा आकर्षण भी था जिसने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका मन मोह लिया, और ये था लड्डू गोपाल जी का नौका विहार उत्सव। मंदिर परिसर में बने जलकुंड में एक सुंदर सजी धजी छोटी नाव और उसमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से अपने हाथों से प्रभु को नौका विहार कराया। ये पल इतना भावुक और सुंदर था कि हजारों श्रद्धालु इस अलौकिक क्षण के साक्षी बनकर खुद को धन्य मान रहे थे।
2: हाँ, मेरा नाम किरण गर्ग है और यहाँ पर मैं अपनी नंद के यहाँ पर संबल से आई हूँ जगन्नाथ जी का प्रोग्राम देखने के लिए, और ये प्रोग्राम देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही उमंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा विश्वास भी नहीं था कि वृंदावन जैसा प्रोग्राम यहाँ होगा, और यहाँ देख करके मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है।
3: क्या क्या देखा
2: आज मैंने देखा? सबसे पहले जब मैं यहाँ मंदिर में आई तो भगवान का छप्पन भोग का मैंने दर्शन किया। छप्पन भोग के बाद मैंने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, उनकी आरती की, उनके चरणों में वंदना की। उसके बाद नौका विहार पर आई, फिर मैंने भगवान को नौका विहार भी कराया।
0: इस पूरे उत्सव के दौरान एक चीज जो कभी न रुकी वो था अखंड कीर्तन। कार्यक्रम के शुरू से आरंभ हुआ भक्तों और संकीर्तन का ये सिलसिला लगातार चलता रहा।

शुभम ग्रोवर, आज यहाँ पे 16वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है जगन्नाथ कमेटी की ओर से। हरि संकीर्तन हर साल ये प्रोग्राम करता है। आज यहाँ पे जगन्नाथ जी को 56वां भोग लगा के आज यहाँ पे हरि संकीर्तन की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है मेरी ओर से। राजीव अग्रवाल, श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद, हमारी पूरी कमेटी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा करती है और आज भगवान को 56 भोग सायकालीन 7 बजे से लगाया जा रहा है और भगवान को नौका विहार जो आप देख रहे हैं, हमारे शौर्य अग्रवाल जी हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। भजन कीर्तन करने के लिए हमारे इस्कॉन मंदिर द्वारा हरिद्वार से पूरी टीम यहाँ मौजूद है और भगवान का गुणगान करेगी। उसके पश्चात हम 56 भोग और भंडारे के रूप में आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएंगे, तब आज का कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। कल यानी 28 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी को नगर भ्रमण कराना है। जब भगवान कहते हैं कि मैं नगर भ्रमण के लिए अपने रथ पे, अपने नंदी घोष रथ पे सवार होकर निकलता हूं, तो अपने सब भक्तों को आशीर्वाद देता हूं और उनके सारे दुख मैं हल लेता हूं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी कल को रथ पे सवार होकर नगर भ्रमण रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कृष्णाटा की चौराहा कल्लूगंज चौक बाजार होते हुए अपने निवास स्थान टीला मंदिर जगन्नाथ मंदिर में विश्राम करेंगे।

भक्त झूमते रहे, नाचते रहे और प्रभु की भक्ति में सराबोर रहे। और फिर वक्त आया इस भव्य कार्यक्रम के समापन का। देर शाम को जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की महाआरती शुरू हुई तो पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। सैकड़ों दियों की लो और हजारों भक्तों की सामूहिक आवाज में गाई गई इस भव्य आरती ने कार्यक्रम का समापन बेहद गरिमामयी और भावुक माहौल में किया।

0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विशेष रेडियो रिपोर्ट।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ छप्पन भोग महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर और संकलन था राजवीर सिंह का। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले के स्वर में श्रोताओं, अभी आप सुनने सुना गुमराह फिल्म का एक गीत। गीत के बोलते साहिर लुधियानवी की और संगीत था रवि का। कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बोल हैं आनंद बख्शी के, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम अनजाना। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

कार्यक्रम छह गीत का अगला और अंतिम गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी से। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रोटी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी देहरादून की और ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आर्काइव्स। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक बंदी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 7:32 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम कल रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और कल रात 10:00 होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कानून की बात, ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कल शाम 7:32 पर और 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुलवंत सिंह के गाए शब्द। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर विकास कंडवाल की यह पूर्व प्रसारित वार्ता जिसका विषय होगा हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव। एपिडा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे। कृषि जगत

कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना, तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
2: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्प कला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोकमाता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
1: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर उन्नाव पीलीभीत हमीरपुर अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
5: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। वाचन स्वर और संकलन है राजवीर सिंह का।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का नजीबाबाद में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट में। और ये विशेष रेडियो रिपोर्ट लेकर हाजिर हूँ मैं, राजवीर।

श्रोताओं, कहते हैं कि जब भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट हो तो पूरा माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। जब आस्था के धागे सामूहिक भक्ति से जुड़ते हैं तो पूरा शहर एक उत्सव बन जाता है। 28 जून दिन रविवार को हमारे नजीबाबाद ने भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक और अलौकिक दृश्य देखा। मौका था श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव का। श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित इस भव्य उत्सव ने रविवार को पूरे क्षेत्र को उड़ीसा के पुरी धाम के रंग में रंग दिया।

0: इस रथ यात्रा की तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी। पूरा नजीबाबाद शहर इस महोत्सव के स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। रविवार को शाम 5:30 बजे रेलवे स्टेशन नजीबाबाद स्थित शिव मंदिर पर इस भव्य उत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई।
1: संकीर्तन का प्रचार करने आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा नजीबाबाद के भक्तों द्वारा श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद और अन्य शहर के सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा का बड़ा विशेष दिन है, पर्व है, समय है जब भगवान कृपा करने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलकर आते हैं और शहर में भ्रमण करते हैं। उस रथ यात्रा के संपर्क में आने वाले सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद कृपा प्रदान करते हैं और ये रथ यात्रा ये प्राचीन परंपरा है और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन फेस्टिवल के रूप में ये रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है और ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ये उत्सव मनाया जाता था। इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इसे भारत के प्रत्येक नगर में नहीं वरन विश्व के प्रत्येक नगर में इसका आयोजन कराया और आज पूरे विश्व भर में ये प्रत्येक नगर में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें भक्त लोग बड़े भाव से जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान जगन्नाथ जी के रथ को रस्से से खींचते हुए नृत्य कीर्तन करते हुए प्रसाद वितरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हुए एक स्थान से रथ यात्रा के जहां पर समापन है वहां तक लेकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ बड़ी कृपा करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेता है स्वागत हेतु खड़ा होता है कीर्तन करता है नृत्य करता है प्रसाद वितरण करता है आरती स्वागत करता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रथ यात्रा के संपर्क में आता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भगवान की इस रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। हमें बड़े भाव से रथ यात्रा में भाग लेना है केवल रस्सा पकड़ के चलना नहीं है वरन बड़े भाव से नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी को सुभद्रा जी को बलदेव जी को सुदर्शन जी को और श्रील प्रभुपाद जी जो उनके शुद्ध भक्त रथ पर विराजमान है उन सभी को लेकर चलना है और अपना जीवन धन्य करना है। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी इस रथ यात्रा में भाग लेकर इस परंपरा को प्रमाणित किया और स्वयं रथ यात्रा के इस पर्व को स्थापित किया। तो सभी बड़े भाव से चलिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री सुदर्शन चक्र की श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन की।
0: रविवार की शाम लगभग 5:30 बजे वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। शाम 5:30 बजे मंत्रोच्चार के बीच संस्था के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और संयोजक संजीव अग्रवाल ने नारियल फोड़कर महाआरती के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया।

अगर भव्य रथ की सुंदरता की बात करें तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ओडिशा का पूरी धाम नजीबाबाद की सड़कों पर उतर आया हो। रथ को भगवान जगन्नाथ जी के पारंपरिक रंगों, गहरे लाल पीले और नीले रंग के वस्त्रों तथा पूरे रथ को गेंदे के पीले नारंगी फूलों और लाल गुलाबों से सजाया गया था। पूरा रथ एक चलते फिरते फूलों के महल जैसा प्रतीत हो रहा था। रथ के ठीक बीच में जब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मनमोहक मूर्तियां विराजमान हुई तो रथ की छटा देखने लायक थी, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे थे। रथ से लगातार उठने वाला अगरबत्ती और शुद्ध कपूर का धुआं और साथ ही रथ के ऊपर से होने वाली निरंतर इत्र वर्षा ने उस पूरे रथ को दिव्य और अलौकिक आभा मंडल दे दिया था और खुशबू से पूरा माहौल सुगंधित हो रहा था। जब प्रभु जगन्नाथ के जयकारों के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विशाल रस्सियों को अपने हाथों में थामकर खींचना शुरू किया तो लगा मानो पूरा नजीबाबाद शहर भक्ति के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा हो। जैसे ही रथ यात्रा आरंभ हुई तो हर कोई महाप्रभु के रथ की एक झलक पाने को बेताब था। पूरा रेलवे स्टेशन परिसर हरे कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा में सबसे आगे पंजाब से आए भक्तों की टोली चल रही थी, जिन्होंने पूरे रास्ते पर अपने हाथों से बेहद सुंदर और बारीक रंगोलियां सजाई हुई थी। फूलों से सजी पालकी और देहरादून के कलाकार रंगोलियों के ठीक पीछे भगवान जगन्नाथ जी की पालकी चल रही थी, जिसे रंग बिरंगे बेहद सुंदर फूलों से सजाया गया था। इसके आगे देहरादून से विशेष रूप से आए कलाकारों की टोली ढोल, मृदंग, डमरू और मंजीरा बजाते हुए समा बांध रही थी।

0: आपका नाम?
1: मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं देहरादून से आया हूँ इस यात्रा में संबंधित
0: जी। तो आपकी क्या भूमिका है इस रथ यात्रा में?
1: मैं भक्ति में तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मैं आता हूँ। और इस यात्रा का महत्व ये है, हमारे पुराणों में हजारों साल से ये यात्रा बेसिकली उन लोगों के लिए जो भगवान जी के दर्शन नहीं करने आते, तो भगवान जी का स्वरूप के लिए बताया गया है कि भगवान खुद ही अपने दर्शन देने के लिए यात्रा के माध्यम से लोगों को दर्शन देने के लिए बाजार में निकलते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते या जो लोग अभक्त हैं तो उनको भी भगवान कृपा करते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान की कृपा है।
0: आज इस यात्रा की भव्यता के बढ़ाने के लिए कौन कौन से मुख्य आयोजन हैं?
1: इस यात्रा के लिए जो मुख्यतः आयोजन ये है कि हमारे वृंदावन से टीम आई हुई है जो हरिनाम संकीर्तन करेगी, और कौन दिल्ली से आए हुए हैं भक्त हैं।
2: विदेशी भक्तों द्वारा किया जा रहा हरिनाम संकीर्तन हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था।

वृंदावन से आई भक्तों की टोली लठमार होली के दृश्य को दर्शाती हुई लगातार आगे बढ़ रही थी।

दिल्ली और हरिद्वार इस्कॉन के भक्तों की टोलियां सुमधुर भजन गाते हुए चल रही थी, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे थे।

नासिक का ढोल युवाओं में जबरदस्त उत्साह भर रहा था। वहीं पूरे यात्रा मार्ग पर इत्र वर्षा हो रही थी, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था।

0: है जगदीश दास है। मैं इस्कॉन संस्थान के अंतर्गत भगवद गीता का स्टूडेंट हूँ और सनातन धर्म मैं एक वॉलंटियर के रूप में कार्य करता हूँ।
1: जी, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का जो महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा आध्यात्मिक महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: ये भारतीय परंपरा का एक बहुत पौराणिक उत्सव है जो अनादिकाल से मनाया जाता है, त्रेता युग से इस उत्सव को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मनाया जाता था। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इसको पूरे विश्व भर में प्रसारित किया। आज विश्व के नगर नगर में इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
1: इस ऐतिहासिक उत्सव के बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे, इस ऐतिहासिक उत्सव को मनाने के पीछे क्या कोई पौराणिक कथा या कोई ऐसा महत्व है?
0: जी, इसमें ये भाव है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी द्वारिकावासी, सभी वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे, तो उस समय क्योंकि भगवान वृंदावन छोड़ के आ गए थे तो द्वारिका में रह रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब द्वारिकावासियों ने देखा कृष्ण यहाँ आए तो कृष्ण के रथ के घोड़ों को फोड़ दिया और घोड़ों की जगह खुद जुट गए। जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासियों का इतना प्रेम है तो भगवान ने कहा जब तुम्हें

0: बलराम सुभद्रा जी सुदर्शन जी के साथ रथ के विराजमान होते हैं और भक्त प्रतिवासी के रूप में रथ को खींचते हुए गंतव्य स्थान तक लेकर चलते हैं।
1: इस भव्य रथ यात्रा के सफल संचालन का पूरा श्रेय श्रीहरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद की समर्पित टीम को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया।
2: जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा लगभग अब अपने मुकाम तक पहुंचने जा रही है। इस विषय में इस समिति के माननीय मंत्री जी ने हमें बताया, आपका नाम और पद।
3: यदु एरन और जोगी चौक बाजार तक पहुँच चुकी है। भव्य शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है और पिछले दो महीने से इसकी तैयारी पूरी धूमधाम से चली जा रही है और अब थोड़ा ही समय रह गया है। भगवान जी का जगन्नाथ जी का रथ खींचते चौक बाजार पार कर चुके हैं और वहां से हम टीला मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं अपने स्थान।
2: वहां जब हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचेंगे वहाँ क्या क्या तैयारियाँ हैं?
3: वहाँ पे भगवान जी का वो होगा, संगीत होगा और फिर भंडारे का पूरा इंतजाम है, जिससे लोगों के लिए भंडारा का पूरा है और भजन आरती और भंडारा।
2: इस भव्य शोभा यात्रा की सफलता के लिए किन को श्रेय देना चाहेंगे?
4: जगन्नाथ कमेटी हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद को मेहनत को इसको श्रेय देना चाहेंगे।
2: बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे?
5: बहुत ही प्यारा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम हमारे आसपास के जिला मंडल में भी नहीं होगा। आप लोग सब आइए, एक बार देखिए, हमारी व्यवस्था देखिए, भंडारा देखिए। कम से कम 3-4 हज़ार आदमी आज होगा हमारे पास हमारी यात्रा में, या भगवान जगन्नाथ जी की विशाल यात्रा में। आप लोग आइए और एक बार हमारी सेवा देखिए। हम भगवान के प्रति सब कुछ एकदम, हम नहीं, हमारा पूरा शहर सब निर्भर है इस चीज़ पे। आप लोग आइए। जय जगन्नाथ।
2: इस समिति में क्या आपको दायित्व मिला हुआ है, अपना नाम और दायित्व और अपनी भूमिका?
5: मेरा नाम निखिल कालरा है, सह संयोजक हूँ। भूमिका मेरी सारी है, आगे से लेके पीछे तक जो भी है, जो भूमिका भगवान जगन्नाथ ने दे रखी है उससे बड़ी भूमिका कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
6: नाम हार्दिक अग्रवाल है, मैं यहाँ जगन्नाथ यात्रा का बहुत छोटा सा सेवक हूँ और ये हमारी यात्रा 16वीं यात्रा है और ये यात्रा हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक त्यौहार की तरह मनाई जाती है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ पर सभी हमारे भक्त भाई, बंधु भाई, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं वो अपनी दुकानें खोल कर रखते हैं और अपनी फैमिली के साथ वो हमारी यात्रा का स्वागत करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। नगर में कीर्तन होता है, हमारे नगर में कीर्तन में रंगोली का प्रोग्राम होता है, परसानी की लटमार होली होती है, वृंदावन के द्वारा भक्त बुलाए गए हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस नाम का जाप करते हैं। ये जाप हमारे लिए महामंत्र जाप है। इस जाप को करने से सभी हिंदू संख्या को मैं ये कहूँगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और इस हरि नाम के आगे कोई अन्य नाम मैं नहीं समझता, मेरी नज़रों में कोई और नाम है, हरि बोल।
1: पूरे आयोजन को सुचारू रूप से चलाने में मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्य भूमिका निभाई। मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल राजू और संयोजक श्री संजीव अग्रवाल लगातार पूरी यात्रा की कमान संभाले हुए थे। उनके साथ उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शिवम अग्रवाल और सह कोषाध्यक्ष निखिल कालरा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की टीम चप्पे चप्पे पर व्यवस्थाएं देख रही थी।
7: मैं राजीव अग्रवाल प्रधान संस्थापक संजीव अग्रवाल और पंकज अग्रवाल, प्रथम यात्रा से आज तक हम एक साथ हैं और आज हमारी कमेटी में 23 लोग हैं। ये दो एरन विदित राहुल अग्रवाल, नरेश अग्रवाल और हमारे बंधु भाई गौरव देशम वाले गौरी अग्रवाल, हमारी कमेटी में सब लोग हैं और सब लोग बड़े सहयोग के साथ, बड़ी मेहनत के साथ भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजन करते हैं। भगवान की यात्रा में विशेष रूप से बरसाने की लटमार होली और बनारस का महादेव बैंड बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कर रहा है और यात्रा
8: अपने मुकाम पर धीरे धीरे चलकर हाथ से खींचने वाला रथ भगवान अपने निवास स्थान पर पहुंचकर एक घंटे का भजन कीर्तन और भंडारा पूछा। कल 27 तारीख में हमारी समिति द्वारा भगवान को 56 भोग आयोजित किया गया 7 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से भगवान की आरती और भंडारा पूछा। इसी के साथ हमारे समिति के एक बच्चे ने शौर्य कवाल ने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान को मौका बिहार किया। उसका बड़ा सच है कि मैं भगवान को मौका बिहार कर रहा हूँ, मैं बड़े संशय में था, मगर इस बच्चे की इच्छा है भगवान को मौका बिहार कराने की और ये मौका बिहार हो भी पाएगा या नहीं, मुझे बड़ी संशय थी कहीं ऐसा ना हो कि समय पर कोई दिक्कत आ जाए, मगर बच्चे ने इतनी मेहनत करी नौका झार इतना सुंदर हुआ, वहाँ जगह नहीं थी रखने की, मुझे कहने कोई शब्द नहीं है, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समिति का प्रधान होने के नाते मैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनके पास हम पहुँच नहीं पाए, जिनसे हम जिस भी तरह से संपर्क नहीं बनाए पाए, मगर वो आज हमारे भगवान की रथ यात्रा में रस्सा खींचकर इतनी गहरी गर्मी होने के बावजूद गर्मी में ये कहिए आग बरस रही थी, उसके बावजूद भी माताएं बहने भगवान के रथ को व्याकुल थी, भगवान की बड़ी कृपा रही, बड़ी सुंदर ढंग से यात्रा को आगे जा रहा है, भगवान अपने निवास पर पहुंचकर भंडारे के साथ व्यवस्था पूरी होगी। श्री राधे राधे राधे।
9: ये जो भक्तों का जन सैलाब निरंतर बढ़ रहा है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे?
8: देखिए ये सब भगवान की कृपा है, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है, मेरे ऊपर तो विशेष रूप से है और हमारे नजीबाबाद में ये कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर दूर दूर तक नहीं है, केवल नजीबाबाद में हमारे प्रभात मंडल के बाद शायद मुझे उम्मीद है हमारे सिर्फ नजीबाबाद में स्थित है। हमारा एक सपना है, हमारी एक इच्छा है, मंदिर जगन्नाथ की तरह बनाएंगे, हमें इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, मेरा इसमें पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से धनराशि के रूप से समय के रूप से पूरा योगदान रहेगा, मैं अपनी पूरी शेष जिंदगी इसी काम में लगा दूँ। श्री राधे।
1: इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजीबाबाद पुलिस भी चाक चौबंद थी। इसके साथ ही शहर के आम नागरिकों ने भी दिल खोलकर सहयोग किया। यात्रा के पूरे रास्ते में स्थानीय श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर यात्रियों और दर्शकों को ठंडा शरबत पिलाया और पानी की भी व्यवस्था की।
10: मैं संत कुमार अग्रवाल यही रमेश नगर नजीबाद में रहता हूँ। हम सब ने मिल करके एक नवीन जन कल्याण समिति बना रखी है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ और ये हर साल जगन्नाथ यात्रा पर हम शरबत का वितरण करते हैं जिससे कि सभी सदस्यों को सभी सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता है। धन्यवाद।
11: मैं जितिन कुमार कोषाध्यक्ष इंडियन जनकल्याण समिति और ये जो स्टॉल लगाई गई है शरबत की, हम हर बार जगन्नाथ जी की कृपा से इसको जगन्नाथ जी हमारे सफल बनाते हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं

0: हम उनका आपस में कंट्रीब्यूशन करके, जो हमारा समिति का फंड होता है उससे ना करके आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं सब लोग, जो हम 10-12-15 लोग हैं, और उसी से हम लोग की तरफ से सब लगाए जाते हैं। कि आज सुबह से हमने 11 बजे से पहले पानी का स्टॉल लगाया हुआ था, और फिर लगभग 3 बजे से हमने शरबत का स्टॉल शुरू किया ताकि इस गर्मी में थोड़ी लोगों को राहत मिल सके।
1: मैं संजय कुमार राजपूत, हमारी जन कल्याण समिति में हम हर वर्ष की तरह लगभग कई साल से, जब से जगन्नाथ यात्रा हमारी शुरू हुई है, हम हर साल ये अपना पानी का और जो है अपना शरबत का जो है ये स्टॉल लगाते हैं। सभी लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके हम लोग करते हैं। श्रद्धालु काफ़ी यात्रा में, बहुत श्रद्धालु हर साल ही यहाँ आते हैं।
2: पूरी यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कृष्णाटाव के चौराहा, कल्लूगंज, चौक बाजार और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रात लगभग 10:30 बजे के आसपास श्री जगन्नाथ टीला मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। वहां पहुंचते ही माहौल अत्यंत भावुक और अलौकिक हो गया। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती उतारी गई।

0: आरती के उपरांत सभी भक्तों के बीच भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। इसी के साथ श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री हरि संकीर्तन मंडल नजीबाबाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। वाचन स्वर और संकलन था राजवीर सिंह का। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या।

झुक गया आसमान। इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। गीत के बोल थे हसरत जयपुरी की और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, बोल हैं कफील अजहर के, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कर्तव्य है।

श्री 420। इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर को। गीत के बोलते शैलेंद्र के और संगीत था शंकर जयकिशन का। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजा और रंक से। आवाज है लता मंगेशकर की और आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को श्रोताओं अभी से आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कर्ज। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं आइए सुनते हैं SH बिहारी का लिखा गीत, संगीत OP नैयर का, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं पारस मणि फिल्म के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म के गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी

0: 954 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये निजी आपात केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत में 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
3: One key pillar which has brought about a transformation.
4: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
5: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
6: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
8: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल था उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवे मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मंसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जामे मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबिकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदामात को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्की सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाए। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम एसनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने ये बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलो हमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है।

0: प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरून मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतल्लिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का अहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50,00,000 मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तिस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तिस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजातमंदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत

0: सलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मकामात के डिजिटल वसीले से फरोग को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। शराकत दारी के तहत गूगल इंडिया आलमी सफरी रुझानात, मुसाफिरों के रवैये और शवाहिद पर मबनी सियाहती तरक्की में फरोग के लिए डिजिटल तरीकेकार के जरिए मालूमात फराहम करेगा। जनरल धीरज सेठ ने आज फौजी अमले के 31वें सरबरा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह इस ओहदे पर फाइज हुए हैं, जो चार दहाई से ज्यादा मुल्क की गरां कदर खिदमात के बाद अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में फौजी कोर में शामिल किया गया था। जनाब रवि अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड का एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार कल से 31 दिसंबर 2026 या आइंदा अहकामात जो भी पहले हों तक होगी। तकरूरियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने उनकी दोबारा तकरूरी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मदरसा तालीमी निजाम में कल से एक बड़ी तब्दीली का निफाज होगा। नए इंतजाम के तहत उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रियासत के सभी अकलियती तालीमी इदारों का इंतजाम रियासत के तहत होगा। रियासती सरकार ने उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारों के एक्ट के तहत नया निजाम मुतारिफ किया है, जिसके तहत उत्तराखंड रियासती तालीमी अथॉरिटी अकलियती तालीमी इदारों को तस्लीम करने, उनके कामकाज की निगरानी करने और तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदार होगी। यह नया निजाम मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी बिरादरियों के तालीमी इदारों का अहाता करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस अदालती हुक्म को कलअदम करार दे दिया है, जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीख की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आईन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिका, पक्तिया और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शिमाली बहर अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने जुलाई के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मामूल से कम बारिश की भी पेशगोई की है। फीफा आलमी कप में मराकेश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकेश ने 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2-3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3-4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरान कुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमरीका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 से खेला जाएगा। एक दूसरे मुकाबले में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 से खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण VBG राम की एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम करें और मुल्क की तामीर में ताउन करें। ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کے خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ راتری کے 9:30 ہوئے ہیں۔ آرکائیوز کاریکرم کے انترگت شروتا یہ سنتے ہیں ناٹک بندی۔ پرتیبھاگی کلاکار ہیں نردیش تیاگی، منجولا نیگی، جیا رندھر، رجنیش شرما، مادھوری بڑتوال، رجنیش گپتا، ڈاکٹر ایس کے جوہر اور درشن کمار۔ प्रस्तुति सहयोग रजनीश गुप्ता का और प्रस्तुतकर्ता और निर्देशिका माधुरी बर्थवाल। आइए सुनते हैं नाटक बंदी।

0: अरे सतुरी, तू इधर आ जा, इधर बहुत सारी खास है। पीली छछरी, जई, सकनी और तो सर बुढ़िया भी। अरे देख तो कितनी सारी घास है, तू आ तो सही।
1: कौन सा भी, यहाँ पर भी बहुत सारी खास है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तू माया को बुला ले दी।

0: आ गई दी।
1: आ गई?
0: आहा, कितनी सारी घास। कौसा दी, मुझसे तो घास जल्दी जल्दी नहीं काटी जाती। तू कितनी अच्छी है।
1: अच्छा,
0: यदि तू मेरे लिए घास ना काटे तो मैं तो रीति ही जाऊं घर।
1: देख, मोटा मोटा घास तू काटना, और एक बात सुन, पेड़ों को बचा लेना। ये घिराल का पौधा है ना, तो वो मालू का, और देख ये बांज है, और ये बुरांस का, और वो देख रही है ना, वो है तिमले का। इसको पैरों से कभी मत दबाना, और घास के साथ साथ इसे मत काट देना। यही तो बड़े होकर विशाल पेड़ बनेंगे।
0: अच्छा किया तूने बता दिया दीदी, वरना मेरी तो अकल ही मोटी है। वो सामने देख दीदी, लीला तो पेड़ भी काट रही है।
2: अरे लीला, ओ लीला की बच्ची, तू पेड़ के ऊपर वाली टहनी बहुत क्यों काट रही है?
3: मैं टहनी नहीं काट रही हूँ दीदी, मैं तो केवल पत्ते पत्ते काट रही हूँ।
2: हाँ, पत्ते पत्ते काट रही हूँ, झूठ बोलते हैं, झूठी कहीं की। अरे पत्ते काट रही है तो खट खट की आवाज क्यों आ रही है भला?
3: ओहो दीदी, गलती माफ करो। गलती से एक टहनी कट गई, और बस दीदी, तुम्हारे कान तो बड़े तेज हैं। अब अपने कान पकड़ूं क्या दीदी?
2: नहीं नहीं, रहने दे, अब इतनी समझ तुझे खुद ही होनी चाहिए थी ना। ये पेड़ हमारे जीवन रक्षक हैं, अब टहनी मत काटना, समझी कि नहीं?
4: सुने तो, आ रही है कोई आवाज?
0: दीदी हमें तो कोई भी आवाज नहीं आ रही।
4: भाई चारों ओर सन्नाटा है, बस पक्षियों की आवाज, और हाँ ये लंगूर जरूर कूद रहे हैं। अब इसके अलावा तो कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। अब लंगूरों को यहाँ से भगाने का इरादा है क्या? चढ़ी होगी, और जब बड़ा सा गट्ठर हो जाएगा ना, तभी नजर आएगी वो। और तुम सब की तो लगता है बैसाखी की तरह गिग्गी बन गई है, और बाहर से दिलेरी का नाटक कर रही हो। क्यों, मैंने झूठ कहा कि सच?
0: सच।
4: क्यों री गैनी, तेरे मुंह पर क्यों ताला लग गया भला? आज तो तेरा गीत भी नहीं हुआ।
5: दीदी मैं तो तुम सब की बातें सुन रही थी। दीदी सच बात तो ये है कि मुझे ना शेरबाग से बहुत डर लगता है। दीदी मैं तो ना गीत गाकर अपना डर भगाती हूँ, ताकि तुम सबको मेरी आवाज सुनाई देती रहे। और दीदी अगर मैं चुप रही ना और मुझे बाघ ले गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गैणे कहाँ गई।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, अब शाम होने वाली है, जल्दी से गट्ठर बांधो और सुनो सुनो ना गैणी, माया तुमने सुना कुछ? चुप रहो, एक मिनट चुप रहो।
0: दीदी
6: आवाज आ रही है दीदी।
7: दीदी किसी जानवर की आवाज लगती है।
8: आ रही है दीदी, आवाज आ रही है।
9: अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा
6: दीदी, अब क्या होगा
7: दीदी, हमें तो डर लग रहा है दीदी।
9: क्या होगा दीदी?
7: दीदी ये तो भालू की आवाज है।
6: घर चलो जल्दी, वरना खैर नहीं है। घास वास यही छोड़ो और भागो।
1: ओहो डरो मत तुम लोग, भालू अभी बहुत दूर है। जल्दी जल्दी गट्ठर बांधो और चलते हैं।
4: अब मान गए ना मेरी सच?
1: अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी ही बात सच निकली। चलो असली डरपोकों का पता तो चला है। अब बस आप छोड़ो और चलो चुपके चुपके। भालू को हमारा पता चल गया तो सबके सब मारे जाएंगे। चलो जल्दी से, भालू नीचे की तरफ जल्दी जल्दी नहीं भाग सकता है।
8: क्यों दीदी?
1: हरी इसीलिए कि उसका मुंह जब नीचे की ओर झुकता है ना, तो उसकी आंखों पर बालों की एक झालर सी पड़ जाती है।
8: अच्छा,
1: और इसीलिए उसे दिखाई नहीं देता। ऊपर को देखने पर बाल पीछे होते हैं, इसलिए आराम से देखता है और जल्दी जल्दी भागकर अपना शिकार पकड़ लेता है।
8: सच दीदी?
9: दीदी आवाज नजदीक आती जा रही है दीदी, भालू हमारी गंध सूंघ लेगा दीदी। अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा?
1: अरे घबराओ मत, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो।
6: चलो जल्दी दीदी, दीदी आगे मैं जाऊंगी।
9: दीदी मुझे बीच में कर लो
6: दीदी,
9: बीच में कर लो
6: दीदी, मैं आगे ही रहूंगी।
1: ओह ठीक है माया, ठीक है, तू सबसे आगे चलेगी और मैं सबसे पीछे, बाकी सब बीच में।
6: ठीक है
1: अब जल्दी चलो।
7: कौसादी, कौसादी बिंदी कहाँ होगी?
1: अरे बिंदी की चिंता तुम मत करो, बिंदी तो घर पहुंच गई होगी। वो तो बहुत फुर्तीली है और उस दिन की तरह जो दूसरा रास्ता है ना, अरे वही गधेरे वाला, वहीं से घर पहुंच गई होगी वो।
7: अच्छा
1: जल्दी चलो। जंगल का रास्ता तो टूट गया, अब हम अपने खेतों में आ गए हैं।
8: हाँ दीदी।
7: हाँ। कौसा दी?

0: कौसा कौसा, अरे दरवाजा खोल।
1: अरे सोहन बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ?
0: चाचा जी, ये कौसा कहाँ है?
1: बेटा कौसा तो खाना खा रही है। आ बैठ, मेरे पास बैठ। तेरी चाची ने आज तूर की दाल बनाई है।
0: नहीं नहीं चाचा जी, बिंदी अभी तक जंगल से नहीं आई।
1: क्या कहा? बिंदी अभी तक नहीं आई?
0: और ये कौसा कब आई?
1: अरे कौसा को आए हुए तो एक घंटा हो गया बेटा।
0: एक घंटा? चाचा जी तेरा कौसा को बुलाओ तो।
1: कौसा कौसा, देख सोहन आया है, इधर तो आ जल्दी से।
2: जी पिताजी।
3: सोहन भैया, तुम कब आए? क्या बात है भाई जी?
0: कौसा, बिंदी अभी तक जंगल से घर नहीं आई।
3: हे, क्या कहा? बिंदी अभी तक नहीं आई?
0: तो क्या बिंदी तुम्हारे साथ नहीं थी?
3: नहीं नहीं भैया, हमारे साथ ही थी बिंदी, लेकिन इसकी आदत है कि जंगल में जाकर वो अकेले ही घास काटती है। सो आज भी अकेले ही चली गई थी, वहीं पर घुड़किन की पहाड़ी पर।
0: घुड़किन की पहाड़ी पर
3: क्यों नहीं आई बिंदी? कहां गई होगी वो? कहीं पहाड़ से नीचे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बड़ी दिलेर है और समझदार भी है।
0: ओह, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? अच्छा मैं चलता हूं।
1: गांव के सभी लड़कों को भी बुला ले बेटा, हम सभी चलते हैं बिंदी को ढूंढने के लिए। तू फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा।
0: कौन सा, जरा ठीक से बता तो, बिंदी किस तरफ गई थी?
3: भैया हम यहाँ से जामुन के पेड़ के बगल वाले रास्ते से घुड़किंद की पहाड़ी पर चढ़ गए थे। और भैया हम लोग दोनों जहाँ पर वो मोटा सा साल का पेड़ है ना भैया,
0: साल का पेड़,
4: हाँ पहाड़ी के बीच वहीं पर घास काट रहे थे भैया।
3: अब चुप। और ना बिंदी जो थी ना भैया, कह रही थी अपनी भैंस के लिए अच्छा अच्छा घास लेकर आएगी वो पीली छछरी।
0: पीली छछरी?
3: पीली छछरी वो पहाड़ की चोटी पर ही है ना, जहाँ पर सीलन भी है।
0: हाँ हाँ, वो सीलन वाली जगह, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, हम वहीं चलते हैं। चाचा जी, मैं गांव के और लोगों को बुला लाता हूँ, आपके पास टॉर्च तो होगी?
1: बेटा टॉर्च तो है मगर उसमें सेल नहीं है बेटा।
0: तो फिर मैं लालटेन ही ले आता हूँ।
1: लालटेन तो ले आ, लेकिन मुझे याद आ रहा है बेटा, तेरी चाची की संदूकड़ी में सेल जरूर होंगे, मैं देख के लाता हूँ।
5: बिंदी बिंदी, मेरी प्यारी बिंदी, तू कहाँ गई? कितना घमंड था मुझे तुझ पर। हरी पगली, तूने कोई दुस्साहस तो नहीं किया? हरी बिंदी, मेरी प्यारी भुली, कहाँ है तू? अब तो आसमान तारों से भर गया है, अब तक भी नहीं आई तू। कहीं वो भालू?
4: नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता।
5: उस पहाड़ी के पीछे जो चट्टान है, कहीं उस चट्टान पर से। बिंदी, नहीं, उस दिन भी तो बाघ से लड़ने को तैयार हो गई थी, कहीं भाग नहीं। ओ, नहीं छछरी काटने गई थी, वहां तो बाघ की गुफा है,

0: उन्हें क्यों भाग रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बहन का।
1: सोन भैया देखो यहाँ घास बिखरा हुआ है।
0: हाँ, हो सकता है यहीं पर घास काटा होगा मेरी बहन ने। चाचा जी, बहन जी, मेरी बहन को कहीं भाग किए किसी जान।
2: अरे नहीं सोहन बेटा, भाग ले जाता तो कम से कम वो चिल्लाती तो सही, और उसकी सहेलियों को कुछ तो पता चलता बेटा।
0: नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका चिल्लाना तो जंगल में ही खो गया होगा, उसकी सहेलियां तो पहाड़ी की दूसरी तरफ थी।
2: नहीं बेटा, मायूस मत हो, अभी ढूंढते हैं, आगे चलो बेटा।
0: इस चट्टान पर भी कुछ नहीं है, चारों ओर सन्नाटा है। चलो भाग की गुफा में चलते हैं।
1: जरा गुफा के अंदर टॉर्च चमकाना।
3: यहाँ तो सुनसान है भैया, यहाँ भी कुछ नहीं है।
0: सारी गुफा खाली है।
2: सोहन बेटा, अब घर चलो। बेटा जो होना था सो हो चुका, होने के आगे किसकी चलती है बेटा। सारा जंगल हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। और कहीं और चलना चाहते हो तो बोलो।
0: चाचा जी, मेरी बहन कहाँ गई? कहाँ बीत रही होगी उस पर। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरी बहन को मुझसे मिलवा दे।

0: दीदी देख तू ना रो, तू रोई तो मुझे भी रोना आ जाएगा दीदी।
1: ना केरी मत रो।
2: ये दीदी,
3: ये कैसी आवाज़?
2: ये दीदी,
3: ये किसी पक्षी की आवाज़?
2: ये दीदी
3: कितना सुंदर पक्षी होगा।
2: ये दीदी
3: पक्षी भी मनुष्य की तरह बोलता है।
2: ये
3: कहीं बिंदी का भूत
2: जाता है ना दीदी फल लेने के लिए, तब तुम सब लोग आ जाना दीदी। हाँ फिर बताऊंगी दीदी, जल्दी करो मेरे भाई को बता दो दीदी मैं जिंदा हूँ।
4: चमत्कार हो गया हो, चलो अभी चलते हैं।
3: भैया अभी नहीं, अभी नहीं, बिंदी ने कहा है कि रात को आना।
2: खुद से चला नहीं जाता है, बहुत कमजोर हो गई है बिंदी, इसलिए उसे डोली में ही लाना पड़ेगा। और हाँ, ढोल बजाते हुए लाएंगे उसे, जिससे जंगली जानवर पास नहीं आएगा, भालू भी नहीं।
4: तो ठीक कहती है, रात को ही चलेंगे।
5: ठीक है, अब हमारी बिंदी आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी,
2: जल्दी आ जाएगी,
5: बिंदी आ जाएगी।
4: सब बाहर चलो। अरे इसके देख तो रही हो कि इसके शरीर में जान तक नहीं रह गई है, आराम करने दो अब जरा इसको। बिंदी तुम आराम करो।
2: पानी दे दो भैया, पानी,
4: पानी। ये ले पानी, ये ले मेरी बहन। अब मुझे बता, तू इतने दिन कहाँ कैसे रही?
2: भैया उस दिन जब घास काटते काटते मैं गुफा के समीप आ गई थी भैया, तो शाम हो गई थी भैया, वो सामने खड़ा हो गया भैया, मेरे तो डर के मारे आवाज ही बंद गई भैया। उसने झपट्टा मारकर मुझे गुफा के अंदर खींच लिया और फिर बाहर से वो वाला पत्थर लगा दिया भैया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत चीखी चिल्लाई भैया, किसी ने मेरी आवाज नहीं।
4: चुप हो जा, चुप कर जा
2: भैया। मेरी आंखें तो भैया अधिकतर बंद ही रहती थी भैया, मुझे बहुत डर लगता था भैया। भैया मुझे भैया कोई चोट नहीं पहुंचाई भैया, उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई, बस मुझे बहुत डर लगता था भैया। भैया मैं कहीं बहुत कमजोर हो गई हूँ भैया, मैं कहीं नहीं भाग सकी भैया, पत्थर बहुत भारी था भैया, मैं कैसे हटाती हूँ उसे भैया।
4: तो फिर तू इतने महीनों तक जिंदा कैसे रही?
2: भैया खाने के लिए ना पल पल लाते थे भैया।
4: हम सोचते थे कि भालू तो उज्जड़ होता है, मनुष्य की तरह ही तो होता है भालू। हाँ देखो भाई, सब लोग, भालू इधर बौखलाता हुआ आएगा।
6: अच्छा।
4: भालू के दिमाग में बिंदी की गंध होगी।
6: हाँ।
4: नीचे वाले कमरे में ही जाएगा।
6: हाँ।
4: बिंदी को तो मैंने माँ के कमरे में दुमंजले पर सुला दिया है।
6: ठीक क्या भैया,
4: जैसे ही भालू कमरे में घुसेगा,
6: हाँ।
4: सुरेंद्र तुम कमरा बंद कर देना।
7: हाँ। अच्छा
6: ठीक।
4: कमरे में मैंने गैस भर दी है, गैस की वजह से भालू थोड़ी देर तक गुर्राएगा,
6: हाँ।
4: फिर बेहोश हो जाएगा। देखो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, भालू अब आता ही होगा। और अपनी रक्षा के लिए डंडे अपने साथ रख लो, औरतें और बच्चे घरों से बाहर ना निकलें, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, चलो दरवाजा बंद कर लो, और गाय बच्ची भी सब अंदर बंद कर लो।
7: सब बंद कर दिया भैया, अंदर कर दिया सबको।
4: अरे भाई आ गया भालू। हरीश, उमा शंकर, गिरीश, मोहन, सब तैयार रहो। चाचा जी आप गोली मत चलाना। हाँ, और जैसे ही भालू आएगा वो वैसे ही पकड़ा जाएगा। अरे सुरेंद्र, हाँ तुम तैयार रहो। ये भालू बहुत गुस्से में लग रहा है, और देखो कोई इसे मारेगा नहीं, बस सिर्फ हाँका लगाना है। सुरेंद्र तुम भी, चाचा जी।
8: हाँ बेटा।
4: और ये भालू, और ये भालू घुस गया कमरे में, बंद करो दरवाजा, बंद कर दिया भालू, बंद कर दिया।
9: भालू इतना मोटा, बाप रे, भालू
5: पीछे हट जाइए।
8: सोहन बेटा, बस अब वन विभाग वाले भी आने वाले हैं। क्यों सोहन बेटा, मांडू को भेज दिया ना बुलाने के लिए उनको?
4: हाँ चाचा जी, बस अब किसी दूसरे अभ्यारण्य में इसे भेज दिया जाएगा जहाँ दूर दूर तक भी मनुष्य की गंध नहीं होगी। अब नहीं बना पाएगा ये भालू किसी को भी
10: और भाई गैनी, तुम्हारी चाय का क्या हुआ?
11: चाय तो पहले से ही तैयार है।
10: अरे
12: आर्काइव्स कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे नाटक बंदी। प्रतिभागी कलाकार थे निर्देश त्यागी, मंजुला नेगी, जयरंधर, रजनीश शर्मा, माधुरी बर्थवाल, रजनीश गुप्ता, डॉक्टर एस के जौहर और दर्शन कुमार। प्रस्तुति सहायक था रजनीश गुप्ता का और प्रस्तुतकर्ता निर्देशिका थी माधुरी बर्थवाल। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत श्रोताओं अब कार्यक्रम खेल दर्पण हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उसमें बोलो मैं, मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है।
1: और कोई दावेदार है?
2: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, विच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूँ एश गार्डनर हो सकती है, क्योंकि दो विकेट लिया है और नॉट आउट रही है, और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं।
1: अब आशा तय करेंगी।
3: मुझे मुझे संकट में डालती है।
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए?
3: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा। तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50 बैट मॉडल सही बात बोली है आपने, तो इसी डाउट में मैं बेथ मोनी को बोलती हूँ।
4: राइट, ओके, क्योंकि द गेम

0: in itself is a very big achievement. And I'm also told that we have a caller with us joining us right now. Namaskar, good evening.
1: Namaskar, Farooq Ahmed baat kar raha hu, Jammu and Kashmir LOC se, Kupwara.
0: Ji, swagat hai aapka ek bar fir se hamare show par. Bataye kya puchna cha rahe hain aap aaj?
1: Ma'am, mera ek to ye sawal hai, kyun Australia bar bar India ko aise match mein hara deta hai? Aur dusra ye, agar Australia aur South Africa ke darmiyan final ho gaya, kya South Africa Australia ko hara sakta hai kya? Aur mujhe ma'am ye bhi bata dijiye, sorry for that, ki India aur England ke darmiyan jo series hogi usme commentary hogi ya nahi?
0: जी आपको बता देंगे. चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, रवि आप ही के पास आते हैं, कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है? कहाँ पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है?
2: देखिए, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है. आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी, आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा. उनकी फील्डिंग देखिए, अपनी फील्डिंग देखिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको. हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का, चार प्लेयर भारत और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी थी, चोट लगी थी उनको, तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी. बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये इतनी समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है. तो ये देखिए, आप बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं, फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है. जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता. सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते, आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं. और जिस दिन इंडियन टीम, चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पे ध्यान देगी, उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब टीम.
3: इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं, फिटनेस पे कितना ध्यान देते थे आप?
4: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना, तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता. सर ने सही बोला कि T20 की वजह, बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पर ध्यान नहीं दिया जाता. फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को, तो
3: नहीं भले ODI टेस्ट हो, फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब?
4: नहीं थी.
3: आज है,
4: आज T20 है, तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती, मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है, जो फिट है. सर ने बिल्कुल

लता मंगेशकर को श्रोताओं भी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था मोगले आजम। और अगला गीत आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम साथ साथ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आपके फरमाइशी पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह कार्यक्रम होता है आपके व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित, तो

आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद का कोई गीत। तो एक बार नंबर हम आपको बता देते हैं, हमारा नंबर है 94570-78288, 9457078288। इस नंबर पर हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और तब तक आप हमें मैसेज भेजना शुरू करते हैं, हम सिलसिला शुरू करते हैं श्रोताओं आपके पत्रों को पढ़ने का। तो कार्यक्रम का यह पहला पत्र हमें मिला है श्रोताओं गांव जुझला थाना शिवाला कला बिजनौर से भेजने वाले राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात ऐसा, सायना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। और ये अगला पत्र हमें मिला है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली का। गांव बगबुड़वा पथरिया से नरे नेताम और कुसुम नेताम। पहाड़गंज मुस्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। अगला पत्र हमें मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से भेजने वाले संतोष खड़के और विनोद खड़से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मोहल्ला हलवैयन कस्बा शेरकोट बिजनौर से ये पत्र हमें मिला है श्रोताओं और भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर। और ये हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये हैं हमारे श्रोता मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, वडिंग खेड़ा पंजाब से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर हैं हमारे ये श्रोता जसपुर उत्तराखंड से। और पर रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा मैसेज के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। झज्जर हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। चंडीगढ़ से ये हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। नई बस्ती गंज डोंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौफीक हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं आसिफ चौधरी, बेगम निहार, रेहाना अरफात, अदीब और कादिर चौधरी। हमारे ये श्रोता हैं गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल हैं अनजान की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कुर्बानी। गीत के बोल हैं इंदिवर के संगीत कल्याण जी आनंद जी का और इस गीत के लिए फरमाइश है हमें मिली हैं और ये फरमाइश हमें भेजते हैं कस्बा अग्रवाल मंडी टटीर बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक खान। फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी टिवानसी खेड़ा। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार गुप्ता, तार कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता कस्बा उगहती बदायूं। ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से और हमारे श्रोता हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद। और इसी गीत के लिए ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गांव हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हमारे साथ हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र सिंह शाह। इसी गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है नर्मदा पार्क मंगलवेदा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन,

सुशील पुरी, बी के पुरी, कैलाश नीलम, रमा पाली, सुनील पाठक, वी के पुरी और विनोद पुरी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे श्रोता हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षदा देशमुख। राजधानी रायपुर से हमारे श्रोता हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनका पूरा परिवार। तो लीजिए आप सभी श्रोता सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कुर्बानी का ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुक

0: कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोता, आप भी अपनी पसंद का कोई गीत अगर सुनना चाहते हैं तो आप अभी सीधे हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 94570-78288। और अगले गीत के लिए हमें फरमाइशें मिली हैं और ये मैसेज हमें मिला है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी करवी। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। शास्त्री नगर बीड़ शहर से हमारे श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सायराज और विशाल। नाला सोपारा मुंबई से हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूपा, महिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। रवाना शिकारपुर बिजनौर से श्रोता हैं उमेर अंसारी, मुरसली अंसारी और अताउर रहमान अंसारी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया। सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं सोनाली नारंग, आशु नारंग और सुरेश नारंग, आशा नारंग। कच्छ गुजरात से हमारे श्रोता हैं गंगा वणकर, गोविंद वणकर, प्रीति जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश जयंती और ये हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी सराफत अली, अब्दुल रहमान और इनकी बेटी है मदिहा। और ये हमारे श्रोता हैं वारसी क्लब सिंधोली बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। और चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना। और ये हमारे श्रोता हैं जिला बिजनौर से विनीत कुमार सिंह, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साही। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म राजपूत का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

और ये अगला मैसेज अगले गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। और ये हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिराही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा। और ये हमारे श्रोता हैं परीमहल कासगंज से आबाद खान नबील खान आरफा खान इल्मा खान एम असलम सैफी और मास्टर जाहिद अली। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहुजा। गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख शेख शमा परवीन साइमा फारूक सरफराज शेख गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। ये हमारे श्रोता हैं हमें मैसेज हमें भेजा है और ये मैसेज इनका हम शामिल कर चुके हैं, दोबारा इन्होंने भेजा है। और हमारे श्रोता मरहरा दरवाज़ा एटा से ये हैं नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नावेद हसन अनम यशफ सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। करोला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से ये मैसेज भी हम शामिल कर चुके हैं। लक्सर रोड गांव सोहाड़ी कस्बा पुकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से हमारे श्रोता मोहम्मद साबिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद हुजैफा और इन्हीं के साथ हैं मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद शोहेब कहकश और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया और गुड्डू। धनौरी तेलीवाला से हमारे ये श्रोता हमारे साथ हैं निसार सलमानी और इन्हीं के साथ हमारे ये श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौशाद सलमानी बेबी आलिया और अयान बापू। मौला अफगानन कस्बा शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता हैं नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी।

कि अब्दुल गनी अलमीर मोहम्मद जैन जन्नत। योगनगर बुल्ढाना पंजाब से नरेंद्र मेहता, सुनील मेहता, सुनीत मेहता, हनी मेहता, सिमरन प्रेमलता मेहता। मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, सम अंसारी, शमीम अंसारी और माहिनूर अंसारी, गांव करेली बरेली से हमारे श्रोता। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोज डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और साथी। जसपुर उत्तराखंड से रियासतुद्दीन सिद्दीकी और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं छत्रपति संभाजी नगर पार्थ रेडियो क्लब, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए अंतिम मैसेज हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं श्रोताओं बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की।

0: इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न करने की धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और

0: सुरक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometer Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rules has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। सवेरे 5:55 पर प्रातःकालीन सभा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।